चतुरताया वई दुख दर्द भाव निकटा नातन नर के रह हो जो या की एक बार चाओ पई को कह चाओ पई संबत सत्रह सहस पणिजै अर्ध सहस फुन तीन के हिजै भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा एत श्री चित्रोपख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री पूप संवादे 405

द्वार तोहे। अपना जान करो प्रत पारा तुम साहिब मैं किंकर थारा। दास जान दे हाथ बारो हमरे सब बैरिन संगारो। प्रथम तरो भगवत को ध्याना बहर करो कविता बिदनाना। कृष्ण जथा मात तृतर उचारो जूक हो ए काबले हो सुधारो।

अंतर गुरु आराधना जिहवा जाप गुरु नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुरु नाओ सतगुर से तीरतिया दरगह पाइया ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो एह वात दे जाग मह उत्तम काढ़ी अहे विरले के ई के महला पंजवा।

दंडावत बंदन अनकबार सर्व कला समरथ डोलन तेरा कहो प्रभु नानक दे कर हाथ सुकाहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन

साध संगत जी संध्या वेले दे सजे हुए दीवाना अंदर लड़ीवार गुर इतिहास दी कथा विचार दा समा होया है। पिछला इतिहास आप जिया ने प्रेम सहित श्रवण कीता है। गोविंदवाल साहब दी धरती ते धन गुरु अमरदास महाराज जी सुभाए मान

0: के पल भर विच ही अपने शरीर नू त्यागना करता सी।
1: सुने मोहरी ते सुख पायो।
0: एदा संगत जी पाई भाई पारो दे गुणा नू सुन सुन के

0: आखदे धन गुरु अमरदास महाराज जिया दे पुत्र बाबा मोहरी जी सुनना कर लवो
1: अधिकारी पिख सब कुछ दीना
0: जिमे गुरु अमरदास जिया ने आख्या सी बचन कीते सन के भाई पारो जी नगर विच चले जावो जेड़ियां बेलोड़ियां वस्तुआं ने आदिक रस्ता वस्ता सारियां अधिकारियां विच वंड देवो जी
1: सतगुर कारण जान प्रवीन
0: संगत जी एदा ही भाई पारो ने आ करके सारा कुछ वंड दिता सी नगर विच जेड़ियां वस्तुआं फिर गुरु नानक दे घर लई सुभाए मान सन।

0: तीन वस्तुआं केड़ियां सन। एक ते चंगी नसल दी घोड़ी सी जी दे हड पैर बड़े खुले सन, सोहनी चाल चल दी चांचल सी।
1: विदत सबन मोह एक तुरंगन,
0: नगर दे लोक दस दे ने के साडे आसे पासे चौधरियां कोल बड़ियां घोड़ियां ने, पर जेड़ी घोड़ी भाई पारो

0: फिर गईया लंदन अमरीका अरब अफरीका जर्मनी चीन रूस का मंगीन नुस्के दे नैन खबर जर पढ़ दे हक धर्म दे बदले दी सूर में जवान बली बलवान वैरी नू फड़ चंब दे गोली दे नाल बंब दे मार दे बड़का खाड़कू लड़ दे
1: चीफ कमांडर सी करैक मरटा ओदा चक फटा जिंदे ते सुखे ठारे दिल तुखे छड़ किते ठारा मार जुरवाना माकन बरियार ताई दिल्ली विच ढालिया लम्मिया पाला सने करवाली मार गया चाली जड़ा तो हिली आर जी बी लाना
0: आओ सने उप गवर्नर दे दिल्ली सब कंबी खाल से चंबी पार्लीमेंट उदाले टेंट फौज ने लाए चुस्त हो खड़ दे हक धर्म दे बदले दी सूर में जवान बली बलवान वैरी नू फड़ चंब दे गोली दे नाल बंब दे मार दे बड़का खाड़कू लड़ दे
2: ओ पापा दे बदले लई निहंग सिंह वर्मा होठी साहब ए अवतार सिंह वर्मा एदा पिंड है तरन तारण जिले विच 12 साल इन्हे दल बाबा बिधी चंद घोड़िया की सेवा की। एक दिन सचखंड श्री हरिमंदर साहब मथा टेकन गए ते जदो मंजी साहब दीवान हाल आए ते मरदे मजाहिद संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरा
3: 1550 KRPI रेडियो ते तुसी सुन रहे सी लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
4: यू आर लिसनिंग टू KRPI 1550 रेडियो फर्नडेल वाशिंगटन।

प्यालेनु भर। अर्दे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने औरंगजेब नू यही आख्या सी, तेरे दमां दे प्याले खाली ने, कुछ भी नहीं है, इनू आबे हयात नल भर, इनू भर, दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। महाराज दी बाणी। भगतां दी दुनिया च अज की है? अज तो मुराद सारा दिन नहीं, अज तो मुराद एकदम, एकदम अज है। बाबा फरीद कहंदे ने, आज मिलावा शेख फरीद, टाकम कूंजणिया मनो मचिंदणिया। कल ते क्यों छोड़दा, भविष्य ते क्यों छोड़दा, हुणे ही मिलाप लै खुदा दा, अज लै, हुणे ही लै। बाबा फरीद, ये गल वखरी है कि 26 साल बड़ी साधना कीती उन्होंने भी, ऐसी केड़ी साधना है जिहड़ी उन्होंने नहीं कीती। कहिंदे रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी बुक। इस चक्कर च ना पैना जिहड़ा भगत माल दे च लिखिया या थानू सुनाया जांदा है, काठ दी रोटी पेट ते बाबे फरीद ने बन्नी रखी 12 साल। बाबे फरीद नू इतना भी नहीं पता सी काठ दी रोटी नाल बुख नहीं मिटदी, ते पेट ते बन्नन नाल बुख नहीं मिटदी, पेट दे च पाण नाल बुख मिटदी। क्या फरीद नू इतना भी नहीं पता सी? बड़ियां बचकानियां कहानियां जिहड़ियां सी भगतां संतां महापुरशां नाल जोड़ देंदे आ, उन्हां नू भी बचकाना बना के रख देंदे। फिर की अर्थ ने, रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी बुख। बिरत हो गया सी शरीर बाबा जी दा, ते दंद नहीं सन, सारे रह गए। खुद कहंदे ने, चबण चलन रतन से सुनियर बह गए। चबण मेरे दंद जांदे रहे नहीं ने। पुराना जमाना इस तरह दे डेंटिस्ट नहीं आंदे सन कुछ दंद ला देन, दंद नहीं सन। धन गुरु अमरदास जी महाराज भी सत्तू गोल के पींदे सन या दलिया खांदे सन, दंद नहीं सन। बाबा फरीद कहंदे ने, रोटी मेरी काट के, घरां चो मंगियां हुईयां रोटियां आंदियां सन डेरे च, ते बचियां कुचियां रोटियां लोकी दे देंदे सन, बचे कुछ एनान वो डेरे च आ जांदे सन, ते फरीद उदों ही खांदे सन जद भुख है, उंज नहीं खांदे सन। लावण मेरी भुख, मुल्तानी जंग मंगियाणा मियां वाली दा इलाका, पता है साग सब्जी नू की कहंदे? लावण। अज भी लावण कहंदे। लावण मेरी भुख, साग सब्जी की है बस भुख, मैं भुख दे च खाना मैनू स्वाद आउंदा। आखिर साग सब्जी इस वास्ते है ना कि रोटी थोड़ी स्वादी लगे, उंज रुखी खानी औखी। बाबा फरीद कहंदे लावण की है, मैं अर्ज करां अज भी मुल्तानी वीर दिल्ली च बथेरे ने पुराने बजुर्ग लावण ही कहंदे। जंग मंगियाणिया दा इलाका, खुशाब कुंदियां दा इलाका, मियां वाली दा इलाका, डेरा गाजी खान दा इलाका लावण कहंदा है। रोटी मेरी काठ की, सुकियां रोटियां कठ वर्गियां ने, लकड़ वर्गियां ने, ते मूंह दे च दंद ना होण ते आपे लकड़ वर्गियां ने, सुकियां रोटियां होण ते मूंह दे च दंद ना होण। रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख, पर मैं खांदा उदों आ जद मैं बहुत भुखा होना, उंज नहीं खांदा। बड़ियां स्वादी लगदियां, बड़ा स्वाद आउंदा, बड़ा रस आउंदा। साधना ते बड़ी गहरी कीती फरीद ने, पर कहिंदे हुणे ही मिला लो, किवें लंबे इन्ने साल लाने, इन्ने दिन खपना, इन्ने सालां बदी बंदगी करनी, हुणे ही लै। आज मिलावा शेख फरीद, टाकम कूंजणिया मनो मचिंदणिया। जे मन नूं मछराण वालियां, मन नूं मछरांदियां कौन ने? वाशनावां केड़ियां? भविष्य दी चिंता, भूतकाल दियां यादां, और की ने? जब तुसी बाणी पढ़ रहे हो ना, ते प्रश्न खड़ा होवे की करिए, मन नहीं लगता, तो मन किथे चला गया? गुजरे हुए कल दे चला गया, आने वाले कल दे चला गया, और की है? गुजरे हुए समय दियां यादां हुंदियां। मैं एक दफा फिर दोहरा दें ताकि गल हमेशा लई तुहानू याद रहे, कम से कम ये सवाल ते फिर किसे ता भी ना करना। मन भटकदा जी, मन भटकदा, मन भटकदा नहीं,
मन चला जांदा है गुजरे हुए कल दियां यादां च, मन चला जांदा है आने वाले कल दी चिंता च। क्यों चला जांदा है भूतकाल दे च? मैं फिर दोहरावां, गुजरे हुए समय च मिले सन कुछ सुख, अपने निशान छड़ गए ने, याद आउंदे ने। गुजरे हुए समय च मिले सन कुछ दुख, अपनियां चोटां दे नक्श छड़ गए ने, याद आउंदे ने। दुख सुख याद आउंदे ने, बहुत गहरे दुख जो भोगे होन याद आउंदे ने, बहुत वड्डे सुख जो मिले होन ते चले गए होन याद आउंदे ने। मन चला जांदा है गुजरे हुए कल दियां सुख दुख दियां यादां विच, मन चला जांदा है आने वाले कल दी चिंता च। क्यों? हुण जो मिले है किधरे ए ना चला जाए, चिंता। पिछे ते मिले सन सुख चले गए, हुण जो कुछ है किधरे चला ना जाए, ये जीवन है किधरे चला ना जाए, जवानी है किधरे चली ना जाए, मिले ने सुख किधरे चले ना जान, चिंता। पता है गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक श्लोक थोनू सारियां नू कंठ होवेगा, क्योंकि श्लोकां दी बाणी च यह श्लोक जदों आउंदा है मैं देखिया सारे ही पढ़दे ने, पर इहदे अर्थ बड़े गैबी ने, अगम्मे ने। चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। तुसी आखोगे सीधा श्लोक इहदे ते अर्थ सानू आउंदे, मैनू भी 25 साल भुलेखा रहा, मेरे ते भी अर्थ 7-8 साल तो खुले ने, पहले नहीं। पहले मैं भी टीके दे च मक्खी ते मक्खी मारदा रहा, अर्थ ए नहीं ने। चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। दरअसल महाराज इत्थे ए कहन, चिंता ना कर, चिंता ते तां कर जे कुछ अनहोनी हुंदी होवे। पता है चिंता किस गल दी? चिंता दे दो कारण मैं थोड़े सामने रखा जो इस श्लोक दे साहिब बयान पे कर दें। पहला, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, हुंदा है जगत नाल होवे पिया, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अंदर चिंता बनी हुई किधरे हो ना जाए, हो ना जाए, चिंता बनी हुई। दूसरा, चिंता का कारण ऐसा होना चाहिए मैं चाहना ऐसा होवे, ऐसा होना चाहिए मैं चाहना, पर अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे, ना होवे, ये चिंता दे दो कारण ने। मैं फिर दोहराना ताकि पूरी पकड़ आ जाए। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, होंदा है जगत नाल होवे। कबीर कहिंदे ना, पारो सी के जो हुआ तू अपने भी जान, केड़े चक्करां च तू पिया, पड़ोसी दी अर्थी निकली है तेरी भी निकलेगी, केड़े चक्करां च तू पिया। पारो सी के जो हुआ तू अपने भी जान, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। होया किसे दा नुकसान होवे पिया, मेरा तो ना होवे, होइए किसे दी बेइज्जती होवे पई, कम से कम मेरी ते ना होवे। कोई असाध रोग असाध बीमारी चमड़िए किसी नूं, कम से कम मैनू ते ना चमड़े, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अंदर चिंता बनी हुई किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। दूसरा, ऐसा होना चाहिए मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, ऐसा होना चाहिए, पर अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे। पता है गुरु तेग बहादुर साहब इस श्लोक च की कह रहे हैं? जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा, चिंता केड़ी गल दी, परे सुट। जो होंदा है वह होंदा है, तेरे लख रोकण दे बावजूद भी नहीं रुकेगा, जो नहीं होंदा नहीं होंदा, तेरे लख करण दे बावजूद भी नहीं होवेगा। जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा, तू लख कोशिश कर मैं बुढ़ा ना हुआ, जवानी बुढ़ेपे च बदलेगी, बस एक कोई उदाहरण काफी है। तू लख कोशिश कर मेरे चिट्टे वाल ना उन होंगे, कर जिन्ने उपाय करने ने कर ले, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, पर चिंता है, हो ना जावे।
ऐसा होना चाहिए, मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, ऐसा होना चाहिए। पर अंदर चिंता है मता ना होवे। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं, जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। इसे नु गुरु अर्जन देव जी महाराज खुलासा करके बयान करते हैं, जो होवा हो वत सो जाने। आख्या गया ना सानू हुक्म मनो, ते हुक्म की है, जो होवा हो वत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो हो गया होना से होना हार है, तेरे कीते कर्म उस दे बने भोए विधान। जो कुछ होया है ये होना हार से होके रहना से। हुण इस नु खिड़े मथे कबूल कर ले ते प्रभु दा चिंतन कर। पर हुण गिलिया नाल भरिया ऐसा ते नहीं होना चाहिदा सी, ये क्यों होया है? एक सूफी संत इस नु इंज बयान करदा है, जो हंस रहा है सो हंस रहेगा, जो रो रहा है सो रो रहेगा, सकूने कलब से खुदा खुदा कर, जो कुछ के होना है सो हो रहेगा। मन चला जांदा है गुजरे हुए समय दियां यादां विच, मन चला जांदा है आने वाले समय दी चिंता च, इनू लिया वर्तमान विच, ते वर्तमान किए एकदम एकदम। टुक दम करारी जो करो, हाजर हजूर खुदा है। बस एक दम दे चले आओ, इस मन नो भगवान हाजर नाजर है। ना किसे मंदिर चो मिलेगा, ना किसे गुरुद्वारे च, ना किसी मस्जिद च, ना किसे चर्च दे च, ना किसे तीर्थ दे च, ना किसे होर पहाड़ दे चो गुफा दे चो। जद भी लभेगा ए नौ निध नाम, नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। गुरुद्वारे गया होया उसका सफल, जिसनु समझ आ गई गुरु नु अंदरों प्रगट करना है। मंदिर गया होया उसका सफल, जिन्हों पता चल जाए हरि नु अंदरों प्रगट करना है, और जीवन नु हरि मंदिर बनाना है। बारों हिंदू वीरां ने एक प्रतीक बनाया है, जिथे जिथे हिंदू टेंपल होंदे ने दरवाजे ते एक घड़ियाल लटका देंदे, अंदर मूर्ति आउंदी है, मूर्ति अंदर आउंदी है, ते घड़ियाल वजा के अंदर जाना एक प्रतीक है कि गुंजार करके आवाज करके धुन अलाप के ही अंदर प्रवेश कर सकोगे। ध्यान नु ले जाण वास्ते धुन चाहिदी है, धुन दे आसरे ते ध्यान अंदर जावे। घड़ियाल लटका रखे उन्हों वजांदे ने, फिर अंदर जांदे ने, मूर्ति दे दर्शन करदे ने, मूर्ति ते अंदर है घड़ियाल बाहर है। गुरु नानक ने नुक्ता निगाह ए रखिया, अगर जीवन मंदिर है तो मूह दे जबान परमात्मा ने आपे ही घड़ियाल लटका के रखे, और केड़ा घड़ियाल लटकाना है? आई घड़ियाल है, इसनू बजाओ, ते इस ते असवार करके ध्यान नू अंदर ले जाओ, घड़ियाल नू बजा के अंदर जाओ। यही मंदिर है हरि मंदिर, एहो शरीर है तिस विच सच्चे का वासा। भगत पीपा जी कहंदे कायो देव कायो देवल कायो जंगम जाति, कायो धूप दीप नहीं बेदा, कायो पूजो पाती। मेरी काया देवल बन गई, मंदिर बन गई, क्यों? हरि प्रगट हो गया। मंदिर विच गया होया सफल उस मनुख दा जिहदा जीवन हरि मंदिर बन गया। ये जबान घड़ियाल है, इसनु बजाना है। हुण मैं फिर दोहरावां ते समाप्ति करां, करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखदियां एक दुख भी नहीं मिटना, एक पाप भी नहीं मिटना। जिहड़ा असीं सुणदे आं ना, एक दफा वाहेगुरु आखो ते जन्मां जन्मांतरां दे पाप धुल जाणगे। सही है, सही है, पर एक दफा आखना ए नहीं जिहड़ा असीं कहिंदे आं, ये नहीं। करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखदे आं, एक पाप भी नहीं धुलेगा, एक दुख भी नहीं मिटेगा, और नहीं मिटदे। एक दफा वाहेगुरु आखदे आं, सारे ही दुख मिट जांदे, सारे ही पाप मिट जांदे। दूसरा, करोड़ दफा वाहेगुरु वाहेगुरु आखना बहुत सौखा है, बहुत सौखा है। कई सैकड़े पाठ जपजी साहब दे कर देन, सुखमनी साहब दे कर देन,
ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਕਰ ਲੈਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਕਰੋੜ ਦਫ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਘੜਿਆਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਘੜਿਆਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਧੁਨਾਕਾਰ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤੱਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੁਨਾਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਪ ਸਾਧਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, 15 ਮਿੰਟ, 10 ਮਿੰਟ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਖੋ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ, ਅਗਰ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਕਰ ਲਓ, ਚਲੋ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਤਨਾ ਰਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਚੰਗੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ, 24 ਘੰਟੇ ਠੀਕ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਸਰੂਰ ਦੇ ਚ ਲੰਘਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਮਸਤੀ ਚ ਲੰਘਣਗੇ, ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ ਕਾਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗਾਲਣਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਨੁੱਖ 20 ਮਿੰਟ ਤੇ ਕੱਢੇ, ਤੇ ਜੇ 20 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਵਕਤ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਮਿੰਟ ਤੇ ਕੱਢ। ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜਪ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਤਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਏ ਜਿੱਥੇ ਜਪ ਤਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬੜਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਉਹੀ ਰਾਗੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਰਸ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਥਾਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਕਤ ਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੁਛ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੁਖਾਸਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾ ਪਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੁਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕੋਈ 1-1.5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਧੁਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਵਿਛਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਦਾਸ ਅਕਸਰ 12-1 ਵਜੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਘੰਟਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ 15 ਮਿੰਟ, ਕਿਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕੁਛ, ਯਾ ਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, 1.25 ਘੰਟਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਭੇਦ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅਸਰ।
सो अस्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, जिथे दिन रात कीर्तन चलदा है मैनू वो जगह दसो, क्योंकि वो जगह चार्ज हो गई होवेगी, उस जगह शक्ति होवेगी, वो जगह इतनी पावन हो गई होवेगी। मैं अर्ज करा जिथे बैठ के घर दे तुसी नाम जपो और रोज जपो, सवेरे शाम जपो, वो जगह इतनी चार्ज हो जाएगी कि दे दुष्ट तो दुष्ट बंदा भी उठे बैठे वो मुंह भी वाहेगुरु निकल जाएगा। उस जगह का असर है, इनू अस्थान भेद कहते ने। सो अस्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, कदी कदाई कीर्तन आंदा वो जगह ना दसो मैनू। गुरु अर्जन देव जी, वो जगह दसो जिथे अठे पैर कीर्तन आंदा। सो अस्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, नीता प्रति होंदा होवे, मैं उत्थे बैठ के सुना, क्योंकि वो जगह चार्ज होई होवेगी, उस जगह दा अपना असर होवेगा। हजारां मनुखां दा यह अनुभव है, विस्टर बुक च लिख के गए ने दरबार साहब, इत्थे आउंदिआं सानू सुकून मिले, शांति मिली है, भावें जो कुछ गायन हो रहा सी साडी समझ तो परे, मंजी साहब दे भावें कथा हो रही सी साडे समझ तो परे, पर इत्थे आके शांति मिलती है, सुकून मिलता है। एक ओही मंदिर है जो 24 घंटे बोल रहे हैं, 24 घंटे कीर्तन हो रहे हैं। चलो समा तो हो गया, पर एक मिनट में थोड़ा लवा। मैं एक दिन कला ते बोल रहा सी, ग्वालियर दी गल है, तो ग्वालियर का जिहड़ा गुरुद्वारा है उत्थों के महाराजे सिंधिया ने बनवाया सी, मस्जिद भी बनाई, मंदिर भी बना के दिता, गुरुद्वारा भी, फौज दे विच उदों सिख हुंदे सन। ये तीन अस्थान नाले नाले उसने बनाए ने, विचकार मंदिर है एक पासे, मस्जिद है एक पासे, गुरुद्वारा है, तिने एक ही लाइन विच ने, और तिने बड़े कीमती पत्थर नाल बनाए गए ने, और उन्हां दे घड़ाई का कम बड़ा गजबदार है। उत्थे किधरे मैनू गल पूरी कला ते मैं बोल रहा सी, कला हुनर नू कहिंदे ने, संगीत एक कला है, कविता एक कला है, चित्रकारी कला है, नृत्यकारी कला है, एक कला किन्नी तरह दी है। पुराने जमाने च अवतारां नू नापदे सन इहदे च कला कितनी है, जैसे कहिंदे ने श्री कृष्ण च 16 कला सन, राम दे 14 कला सन, राम नू छोटा मनदे ने कृष्ण तो, उन्हों संपूर्ण अवतार भी नहीं मनते, संपूर्ण अवतार कृष्ण नू मनदे ने। महाराज गुरु अर्जन देव जी ने इस पंक्ति नू जो जिहड़ी मनौत है अगे कीता है, 16 कला संपूर्ण फलिया, अनंत कला होए ठाकर चलिया। परमात्मा सिर्फ 16 कला नहीं, अनंत कला नहीं गिण सकते, उसे तो कोई कला लेके आ जाते 16, कोई 4, कोई 6, किसी नू अंसा अवतार भी कहे, अंश मात्र कला है, बथोड़ी अंश मास्तर कला। तो मैं बोल रहा सी जिहड़ियां कला आउंदियां ने, एक सियाणा सिंधी वीर मेरे को आया, कहण लग गैने जी थानू किले ते ले चलदे आं, थानू कला का एक नमूना दिखांदे आं, जीवदा जागदा, देख के तुसी दंग रह जाओगे। कहने मैं थोड़ी एक कला की कथा सुन के प्रभावित होया, ते थानू कला की जीवदी जागदी मूर्ति दिखाना चाहना, तुसी समा कढ़ो मेरे नाल, चलो किले ते। मैं किले ते मैं रोज़ जाना, 6वें पातशाह दा स्थान बने हुआ, मैं दर्शन करूँ रोज़ शाम नूं जाना हुंदा, ते तुसी जद दसो किस वक्त कहिंदे हो मैं चलदा। कहण लगे ठीक है फिर शाम नूं चलांगे। शाम नूं उत्थे गए, वह एक मैनूं मंदिर च लै गया, बड़ा उच्चा मंदिर है, करीबन बंदा 10 मील भी दूर होवे ना ट्रेन दे दिखाई देंदा है, दूरों दिखाई दे, बड़ी बुलंद चोटी है। उस मंदिर दे चले गया ते मैनू कहण लगा देखो कला दे नमूने, पत्थर दे उते चित्रियां या तस्वीरां, बेल बूटे, वाकई उन्हां हत्थां नू दाद देनी पएगी जिन्हां ने बनाए। कोई अद्धा घंटा मैं वह मंदिर देखिया, मैनू कहण लगे ज्ञानी जी इस मंदिर बारे की राय। मैं कहा कला दा नमूना,
वाकई महान है। कला जीवदी जागदी दर्शन पई देंदी है। पर मैं आखा मित्रा बुरा ना मनाई, मैनू अफसोस है कि मंदिर मुरदा है, मरिया होया है। मैनू कहन लगे तुसी कथा करदे हो, असी धार्मिक बंदा थानू समझदे हां, तुसी इस तरह का शब्द कहंदे हो मंदिर बारे मुरदा है। मैं कहा मित्रा तू व्याख्या मेरे कोल सुन ले, जीवदे जागदे मनुख की यह पहचान आउंदी है बोलदा है, मुरदे की यह पहचान आउंदी है लख भी सिर खपाओ नहीं बोलदा। मैं कहा इत्थे कबूतरां विठां पईआं करदीआं ने, गंदगी इतनी है लगदा साल तो इत्थे किसी ने झाड़ू बुहारी भी नहीं दित्ती। कई सिलां पत्थर निकलदे पए ने, डैडेरी हो रहे ने, ना इत्थे कोई आरती, ना इत्थे कोई जप, ना इत्थे कोई धूप दीप, ना कोई इत्थे मंगलाचरण, ना इत्थे कोई प्रभु दे गीत। ये बोलदा ही नहीं, मुरदा है। सजाया होया, संवारिया होया, शिंगारिया होया खूबसूरत मुरदा है। मनुख ना बोले शिंगारिया होया संवारिया होया कि मैंने रखदा है। नाम बिना जेता व्यवहार ज्यों मृतक मिथ्या सिंगार। शिंगार मैं कहा बड़ा सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। मंदिर मुरदा है। जीवदा जागदा मंदिर होंदा जिथे आरती होवे, पूजा होवे, पाठ होवे, जप होवे, तप होवे, हरि कीर्तन होवे। मैं कहा रूहे जमीन ते एक ऐसा मंदिर भी है 24 घंटे बोलदा है, वो है हरि मंदिर दरबार साहब 24 घंटे बोलदा है। और मैं ये भी अर्ज करदे हां वो मंदिर हमेशा खतरे च रहा है। पता है क्यों? जिंदगी नू खतरा है, कबरां नू खतरा नहीं आउंदा। जलदे दीवे नू खतरा है, बुझे दीवे नू खतरा नहीं है। फुल्लां नू खतरा है, कंडियां नू खतरा नहीं आउंदा। जिंदगी नू खतरा आउंदा है, कबरां नू खतरा नहीं आउंदा। 24 घंटे बोलदा उहदे कोल जिंदगी, अगर की होया जे उहदे खतरियां च रहिंदा। इस चक्कर च ना पैणा, अबदाली ने गिराया। मसे रंगण ने उस अस्थान की बेइज्जती की, हद हो गई। ये मंदिर ऐसा निगाह च आया, हर तरह का अनर्थ इत्थे करो, क्यों? जिंदगी है, बोलदा है, जीवन है। डिठे सबे थाओ नहीं तुद जेव्या, बद्धो पुरख विदाते तां तू सोया। अंदाजन 12 महीने च दास, 1 महीना 5 दिन। हर साल उत्थे कथा करदा है, और 40 साल तो मेरा नागा नहीं पिया कदी। मेरा अपना भी अनुभव है, मैं सारी दुनिया च कथा कीती है, उत्थे कथा करनी मेरे कोल बंदगी हो जाती है, बाकी जगह ते एवें किरत हो जाती है, समा पास करना हो जाता, उत्थे बंदगी हो जाती है। और मेरा अपना अनुभव मंदिर बोलदा 24 घंटे बोलदा, उत्थे बड़ी जिंदगी है। उत्थों दी वाइब्रेशन, उत्थों दी लहरां, उत्थे दा जीवन। दिल्ली दियां संगतां नूं मैं कहा जे थानू सीसगंज रस ज्यादा आंदा, इत्थे जिंदगी है। इत्थे किसे ने अपना ओ खून डोलिया जो अमृत सी, इत्थे ओ आत्मा कई दिन बैठी रही जो 24 घंटे परमात्मा नाल जुड़ी रहिंदी सी। फिर लगातार इत्थे 24 घंटे कथा कीर्तन ते पाठ ते जप, तो जरूर रस आवेगा। जेडे कुछ थोड़े जिहे इस मिजाज दे बंदे ने उन्होंने ज्यादा रस आएगा। मैं उन्होंने कहा कीर्तनिया के कीर्तन का रस ना समझ लेना, उन्होंने कंठ का उन्होंने कला दे नहीं, ते कथा व्याख्या दलीलों का रस ना समझ लेना। यह गुरु तेग बहादुर साहब जी की बरकत है। इथों दियां मेहरां, इथों दियां लहरां ने, यह अस्थान भेद है, यह जगह दस है। इस वास्ते कहा गया है जिमें जोड़े असी बहर ला के आते हाँ, कोई दुनियावी गल उत्थे नहीं करनी। जिस जगह ते बैठ के जप करना है, तप करना है, बाणी पढ़नी है, कीर्तन करना है। हर घर दे जिवें किचन आउंदा है, रसोई आउंदी है, भोजन बनांदे हैं शरीर लई, हर घर दे 2 फुट जगह ते कम से कम इतनी होवे, 4 फुट जिथे बैठ के चौकड़ा मार के वाहिगुरु मनुख जप सके, वो जगह चार्ज हो जाएगी। उस जगह दे बरकत पै जाएगी। उस जगह ते दुष्ट भी बैठेगा, उहदे मुंहों राम निकल जाएगा, वाहिगुरु निकल जाएगा। इस तरह तुसी करके जो है देखना। बहुत सारा समा मैं थोड़ा ले गया। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन, रहमत करन, जो कुछ आपने सरवण कीता थोड़े हिरदे च वसे, जो मैं थानू सुनाया मेरे हिरदे च वसे।
ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਜਪ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜ ਦਫ਼ਾ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਜਿਤਨਾ ਕਰਾ ਲਏ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਪ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮਸਤੀ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਸਰੂਰ ਦੇ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਦਫ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾ ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਘੜਿਆਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੋਣਾ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ।

जपो त एको नामा अवर निराफल कामा अवर काज तेरे किते ना काम मिलसाद संगत भज केवल नाम ए रब्बी दौलत ए रब्बी सवात धन गुरु नानक देव जी महाराज सारियां दी झोली च पावे सारियां दियां झोलियां भरन सारियां दी जिंदगी सफल होवे सारियां दा और इत्थों दे मुखी सजणां दा सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद बोल चुक दी शमा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

क्या वाकई परमात्मा समझ दे चाह जांदा है? कतई नहीं, कतई नहीं। अगर वो समझ दे चाह जांदा है तो मेरी समझ वड्डी है, परमात्मा वड्डा नहीं है। तू समरथ वड़ा मेरी मत थोरी ना। हे प्रभु तू ते सागर दी तरह है, मेरी अकल मेरी समझ ते छोटा जिहा प्याला है। ये प्याले दी सागर किस तरह आएगा? लेकिन एक समझ मिलती है कि समझ समझ के ए समझ मिलती है, हे प्रभु मैं तेनू नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। क्यों? तू मेरी समझ तो वड्डा है। और समझ मुतासर हो जाती है, समझ प्रभावित हो जाती है, हिरदा याद करने लग पैंदा है। जिन्ने चिर तक साड़ी अकल परमात्मा तो प्रभावित नहीं, हिरदा याद नहीं कर सकता। वाहेगुरु वाहेगुरु जबान करती रहेगी, याद नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं होगा। जो मेरी समझ दे च नहीं, नहीं है। क्या समझ दे च आ जांदा है? नहीं। समझ समझ के ए समझ मिलती है कि मैं तेनू नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। मैं पढ़ रहा से एक दफा सुकरात दी आटो बायोग्राफी, उन्हें अपनी आप बीती लिखी है। कहिंदा है जद मैं छोटा जिहा बच्चा सी, बच्चियां नाल खेड़दा सी, मैं अक्सर डींगा मारदा सी, मैं सब कुछ जानना, सब कुछ जानना, तुसी कुछ भी पुछो ते मैं दसांगा। कहिंदा बच्चियां दा मैं लीडर बनिया होया सी, नेता बनिया होया सी, बच्चे मैथों भयभीत होंदे सन, बच्चे मेरा रोब मनदे सन, बच्चियां दा मैं मुखी। कहिंदा जद मैं जवान होया तो फिर मैं ए कहना शुरू कीता, कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानदा, नहीं जानदा, सारे सवालां दा जवाब नहीं देंगा, मैं सब कुछ नहीं जानदा। कहिंदा अज मैं बुढ़ा हो गया, ऐलानिया कहिंदा कि मैं कुछ भी नहीं जानदा, मैं कुछ भी नहीं जानदा, मैं जान जान के ए जाने है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, सोई अजान कहे मैं जानया, जानन हार न जाना छाना रे। ओही महामूरख है जेड़ा कहिंदा मैं सब कुछ जान रे, खाक जानेगा? ज्ञान दा ते सागर पिया है बार, तेरी अकल प्याला किस तरह भरेगी? जिंदगी भर दी जानकारी मनुख दी इंज है जिवें सागर दे चो एक चम्मच पानी दी मिली, इस तो ज्यादा नहीं, इस तो ज्यादा नहीं। सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न छाना रे। परमात्मा दा रस उस दिन प्राप्त होंदा है कदों? जद मनुख इंद्रियां तो उच्चा उठदा है, उन्हों इंद्र जीत कहंदे ने, इन्हे जीत लिया इंद्रियां नू। नास्तिक कहिंदे ने ऐसी कोई दुनिया ही नहीं है, ऐसा कोई रस ही नहीं है। क्यों? ऐसा शरीर नू कोई होर इंद्र ही नहीं है। कुछ वेख के रस मिलेगा, कुछ सुन के, कुछ चख के रस मिलेगा, कुछ स्पर्श करके, कुछ सूंघ के, होर भी कोई रस है ऐसा शरीर रस मान सके कोई इंद्र ही नहीं है। बड़ी प्रबल दलील देंदे ने नास्तिक इस संबंध च, बहुत कुछ कहंदे ने। इस वास्ते ऐलानिया कहंदे पानी दी लोड़ है गुरबाणी दी नहीं, धन दी लोड़ है धर्म दी नहीं, पदार्थां दी लोड़ है परमात्मा दी नहीं। पदार्थां तो बिना जीवना बड़ा औखा है, परमात्मा तो बिना जी सकदे हैं। पानी तो बिना जीवना बड़ा औखा है, गुरबाणी तो बिना जी सकदे हैं। धन तो बिना जीवना बड़ा औखा है, धर्म तो बिना जी सकते हैं, इंज कहंदे ने। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने पानी ना मिलिया शरीर मरेगा, वाकई शरीर दा जीवना बड़ा औखा होगा, पर गुरबाणी नाल मन

संतपना की है। पैगंबर किसनु कहंदे ने, अवतार किसनु कहंदे ने, पूरन संत किसनु कहंदे ने, फकीरी चीस्त, ये सिर्फ दो शब्दां विच, दो बोलां विच इतना बड़ा सवाल। फकीरी चीस्त, फकीरी क्या है, संतपना की है। गुरु नानक देव जी महाराज जवाब देंदे ने, इब्तदाए फकीरी फना अस्त, इंतहाए फकीरी बकास्त। किसे उच्चे आदर्श लई अपने आप नू निछावर कर देना, कुर्बान कर देना, मिटा देना, और हमेशा लई अमर तत् दी प्राप्ति कर लेना, बस इसे नू फकीरी कहंदे। यही संतपण है। इस सवाल जवाब में फिर थोड़े सामने रखा जन्म साखी च ने। फकीरी चीस्त, फकीरी की है, फकीर किसनु कहंदे ने, संत किसनु कहंदे ने। उस दिन भी मैं अर्ज की थी सी, संत दिखाई देना एक श्रृंगार है, संत हो जाना एक तपस्या है, मेहनत है, कठोर मेहनत है। संत दिखाई दे जाना ते संत नहीं है, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते मुर्दा शिंगारे आया और कुछ भी नहीं है। नाम बिना जेता व्यवहार, जो मेरे तक मिथिया श्रृंगार, ए मुर्दे नु शिंगारिया गया। धार्मिक लिबास ते है, धार्मिक जीवन नहीं है, धार्मिक जिंदगी नहीं है, सिर्फ लिबास ही लिबास। फकीरी चीस्त, फकीरी किसनु कहंदे ने, इब्तिदाए फकीरी फनास्त, इंतहाए फकीरी बकास्त। किसे उच्चे आदर्श लई अपने आप नु कुर्बान कर देना, मिटा देना, और हमेशा लई अमर तत् दी प्राप्ति कर लेनी, बस इसनु फकीरी कहंदे ने। गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने जीवन दे राही अर्थ सामने रख दिते। कहिंदे ने मनुख नूं तीन घटनावां तो गुजरना पैंदा, जन्म जीवन मरण। जन्म होया होवेगा, जी रहा होवेगा, मर गया होवेगा। इन्हां तीन अवस्थावां तो हर एक नूं लंघना पैंदा, जन्म जीवन मरण। दुनिया दे कुछ ऐसे पुरुष ने, इतिहासकारां ने उन्हां दे जीवन दी कथा नूं लिखिया, जन्म किथे होया सी, मां बाप कौन सन, ए भी नहीं पता। बहुत सारे भगतां दा जीवन, बहुत सारे क्रांतिकारियां दा जीवन लिखण वाले ने, इतिहासकारां नूं पता भी नहीं चल सके उन्हां दे मां बाप कौन सन, जन्म किथे होया सी, कदों होया सी। जन्म दी कोई छाप नहीं है, इतिहास दे जीवन दी छाप है। जो कुछ वो करदे रहे उस नाल जगत नूं कुछ मिलिया। तो इतिहासकारां ने जीवन दी फिक्र की थी, जन्म दी नहीं। फिर कुछ ऐसे ने जिन्हां दा मरना बड़ा महान सी, उन्हां दी मौत कुछ दे गई, उन्हां दी मौत दे नाल कुछ क्रांति होई, उन्हां दा मरना जगत दी झोली विच कुछ पा गया। तो इतिहासकारां ने उन्हां दी मौत बारे बड़ा लिखा। जैसे मैं देखदा शहीद भगत सिंह दी समाध ते हर साल मेला लगदा है फिरोजपुर दे।
करीबन करीबन 1.5-2 लाख बंदे कठे हुंदे ने। पंजाब दी सारी मिनिस्ट्री ते पहुंचदी है, सेंट्रल तो भी पहुंचदे ने मिनिस्टर, फुल भेंट करन वास्ते, फुल माला चढ़ाण वास्ते। दरअसल उस पुरुष दा मरना इतना महान सी, कुछ दे गया, उदी मौत कुछ दे गई। उस दी मौत जगत वासियां दी झोली च कुछ पा गई। तो इतिहासकारां ने उस दी मौत नू लिया है, बरसी मनांदे ने, उस दिन दुनिया कठी हुंदी है। इतिहास दी कोई लंबा चौड़ा ए जिक्र नहीं, कदो जमया, कौन मां बाप सन, किस शहर दे जमया, कोई जन्म कथा नहीं है, मरण कथा है। तो किसे दा मरना इतना महान आउंदा है कि कलम दे धनिया नो, दिमाग दे धनिया नो, उना दे ते कुछ लिखना पैंदा है, मेहनत करनी पैंदी। कईयां दा मरना ते आम साधारण आउंदा है, चलो जी कोई ताप बुखार एक्सीडेंट होया, चले गया, शरीर गया, लेकिन जीवन महान होंदा है, उना दी जिंदगी कुछ दे जांदी है। तो फिर कलम दे धनी उना दे जीवन बारे लिखते हैं। संसार दे इतिहास दे हजारां साल उड़ी करण तो बाद कदी कदाई कोई ऐसी आत्मा भी जन्म लेंदी है जिदा जन्म भी क्रांति करदा है, जिदा जन्म भी अपनी छाप लांदा है। भट्ट गुरु अर्जन देव जी महाराज बारे कहंदे ने, तें जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणिया। कोई जीवन दे साधना करके ब्रह्म ज्ञानी होया होवेगा, तुसी जन्म तो ब्रह्म ज्ञानी हो। कोई बड़ी साधना कर करके संत बनिया होवेगा, तुसी जन्म तो संत हो। कोई मेहनत कर करके रब नाल जुड़िया होवेगा, तुसी जन्म तो जुड़े हो, तुसी जन्म तो महान हो। और इसका इतिहासिक सबूत मिलता है, 2-2.5 साल की उम्र ते कुछ नहीं आउंदी, महाराज गुरु अर्जन देव जी, बालक गुरु अर्जन देव जी, धन गुरु अमरदास जी महाराज दे सिंघासन ते चढ़न की कोशिश पे करते सन। बजे होया है माता भाने जी, और डांट दे लहजे विच आख्या, ए सतगुरां दा सिंघासन है, ये गुरु नानक की गद्दी है, इसते तीजे गुरु नानक विराजमान होंदे ने, तुसी आइंदा चढ़न की कोशिश ना करना। माता भानी जी आ गए। इस तरह बालक गुरु अर्जन देव जी नू डांटदे होया, अपने बच्चे नू डांटदे होया ऐसा आख्या जदों चढ़ रहे सन। मुस्कुराते हुए गुरु अमरदास जी महाराज भी आ गए। गोविंद वाल दी ये घटना, एकदम भाने जी कोलों बालक गुरु अर्जन देव जी नू लेके सिंघासन ते बिठा दिता, और उच्ची सुर दे चाख्या, दोता बाणी का बहुता, ये दोतरा है मेरा, ये बाणी दा जहाज है, हजारां साल तक दुनिया इस जहाज दे च बैठ के संसार तो पार हुंदी रहेगी। जन्म जीवन मरण तिन्ने महान किसे दे नहीं आउंदे। किसे दा जन्म कोई घटनाकारी हुंदा, किसे दा मरण, किसे दा जीवन एक ऐसी आत्मा जिसका जीवन भी जगत नूं कुछ दे रहा है, जिस दे जन्म ने भी फिजा नू मुअत्तर कीता, बदलिया, क्रांति लियांदी, पर जिस दी मौत ने भी बड़ा भारी जो है क्रांतिकारी नजारा पेश कीता। हुण मैं अर्ज करां, बार दी जिहड़ी ताकत है, शक्ति है, इनू सता कहिंदे ने, सता। इस सता कई तरह दी हुंदी है,
ਇਹ ਤਾਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਤਾਣਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਨਿਤਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨਿਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਤਾਣੀ ਕੌਮ ਨਿਮਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਤਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

0: अष्टपदी
1: जिसके अंतर राज अभिमान
0: सो नकपाती होवत स्वान
1: जो जाने मैं जो बनवंत
0: सो होवत पिष्टा का जंत
1: आप उसको कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भोजन परमावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
0: ज्ञान की हां मुक्ति अज्ञा सुख पावे
1: धनवंता होए कर कर भावे
0: तरण समान का चंग न जावे
1: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस
0: और भीतरता का होए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत
0: मैं होए जाए पसमंत
1: सेना बदे आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगाह परवान
1: कोट कर्म करे हो धारी
0: शरम पावे सकले बरथारे
1: अनक तपस्या करे हंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगाह को कैसे गवे
1: आप को जो भला कहावे
0: इसे भलाई निकट में आवे
1: सर्प की रेन जा का मन होए
0: कहो नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कष होए
0: तब इस को सुख नाही कोई
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब धारे को बैरी मीत
0: जब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: प्रभु कृपा से बंधन टूटे
0: गुरु को साधना अनक हो छुटे
1: सहस कटे लख कोट तावे
0: रतन आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग विखिया के करे
0: मैं तपतावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सपन मनोरथ फिर थे सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: दुर्भागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करने हार
0: इसके हाथ कहां विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप प्रभु सोए
1: जो किस पीनो सो अपना रंग
0: तब ते दूर सब हूं कै संग
1: दूजा देख करे विवेक
0: आप एका पै अनेक
1: मरे न बिनसै आवै न जाए
0: नानक सधी रह समाए
1: आप उपदेशै समझे आप
0: आपे रचिया सबके साथ
1: आप तीनों आपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: पुस्ते भिन्न कहो किस होए
0: आंत अंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नै बखियानी
1: सच सच सत सब कीना
0: कोट मदै के विरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनुरूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: कटकट सुनि सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत शरण जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत का दुखन आर जा कटे
0: संत का दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत का दुखन सुख सब जाए
0: संत का दुखन नरक में पाए
1: संत का दुखन मत होए मलीन
0: संत का दुखन शोभा देहीन
1: संत के हथे को रखे न कोई
0: संत का दुखन थान भ्रष्ट होए
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग निंदक भी तरे
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत का दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन का दुखन तृष्णा नह जले
0: संत का दुखन सब को छले
1: संत का दुखन तेज सब जाए
0: संत का दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाउ को नाही
0: नानक संत भावे ता ए पी गत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज ते हीन
0: संत का निंदक दुखिया अरदीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख में दुख
0: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा अपवित
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लग
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते टरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊं
0: नानक संत भावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
0: संत का दुखी किते काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उदयान परमाई है
0: संत का दुखी उजड़ पाई है
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: जो सास बिना मृत की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस नाही
0: अपन बीजा पे ही खाहे
1: संत के दुखी को अवर न रखन हार
0: नानक संत भावे ता लय उबार
1: संत का दुखी इउं बिल लाए
0: ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे
0: ज्यो पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटे अकेला
0: ज्यो बुआड़ तेरे खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्त निंद का तुर ही पया
0: नानक जो तिस भावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइये
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइये
1: संत के दुखी की पूजा न आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न दृष्टे कोई
0: जैसा भाव है तैसा कोई होए
1: पया कीर्त न मिटे कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसकी हो करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: रबी उसत करहो दिन रात
0: तिसे त्यागो सास गिरा
1: सब कछ वर्तै तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे
0: वडपागी नानक जन से श्लोक
1: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर राई।
0: ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਪਰਮ ਪਉ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ
0: ਜੀਵਨ ਪਾਉ ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ
1: ਜਿਸ ਕਹਿ ਦੀਆ ਰਹਿ ਅਗਾਹੇ
0: ਪੌਰ ਨਿਸ਼ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ
1: ਮਾਰੇ ਰੱਖੇ ਏਕੋ ਆਪ
0: ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹਾਥ
1: ਇਸਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ
0: ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਲਾਗੇ ਕੋਏ
1: ਉਸਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ
0: ਕਰਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ
1: ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ
0: ਸਦਾ ਸਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ
1: ਨੈਨੋ ਬੇਗ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ
1: ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ
1: ਹਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ
0: ਆਦਰ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮੱਥਾ
1: ਵਡ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ
0: ਚੇਤਨ ਮੰਤਕ ਨੀ ਸੰਸਾਰ
1: ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨੋ ਤੇ ਸੁਖੀ
1: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਣੈ
0: ਤੇ ਤੁਤ ਕੀਓ ਸੋਝੀ ਜਾਣੈ
1: ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਜੈ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਜਾਨੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
0: ਸਰਬ ਰੋਗ ਤਿਓ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ
1: ਅਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਖਿਆਨ
0: ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਨ
1: ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਨ ਕੀ ਫਸਾ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ
0: ਨਾਨਕ ਪਛਾਣ ਲਾਗੈ ਦੁਖ
1: ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਚਿਤ ਆਵੈ
0: ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵੈ
1: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ
1: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ
0: ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ
1: ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ
0: ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਪੂਜਿਆ
1: ਜਬ ਦੇਖੋ ਪਰ ਸਭ ਸ਼ਮੂਲ
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਕਮ ਸੋਈ ਅਸਤੂਲ
1: ਨੈ ਕਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨੈ ਕਿਸ਼ ਮਰੈ
0: ਆਪਣੇ ਚਲਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ
1: ਆਪਣ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ
1: ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ
0: ਅਨਕ ਜੁਗ ਤਰਚ ਥਾ ਬਿਉ ਥਾ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਸ਼ ਖੰਡ
0: ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
1: ਲੱਖ ਭੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ
1: ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋ ਪਾਵੰਤ
0: ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਨ ਮੰਤ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਪਸਾਰਨ
1: ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲ
0: ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ
1: ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਹੀ ਲਾਗੈ
0: ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਟ ਭਾਗੈ
1: ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਤਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉਤਮ ਕਰ ਮਾਨ
1: ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਸੈ ਹਰ ਸੰਗ
1: ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ
0: ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ
0: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ
1: ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਹੀ ਸਮਾਏ
0: ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਣਿਆ

0: सो पंडित जो मन प्रबुद्ध
1: है, राम नाम है आत्म में शुद्ध है,
0: राम नाम सार रस पीवे,
1: उस पंडित के उपदेश जग जीव है,
0: हर की कथा हृदय बसावे,
1: सो पंडित फिर जो नयावे,
0: वेद पुराण सिमरत बूझे मूल,
1: सुख मै जाने स्थूल,
0: वरना को दे उपदेश,
1: नानक उस पंडित को सदा देश,
0: बीज मंत्र सर को ज्ञान,
1: जो वरना में जपे को नाम,
0: जो जो जपे तिसकी गत हो,
1: सत्संग पावे जन कोई,
0: कर कृपा अंतर उतार है,
1: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार है,
0: सर्व रोग का औखद नाम,
1: कल्याण रूप मंगल गुण गाम,
0: काहू जुगत कितने न पाइया धर्म,
1: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म,
0: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास,
1: जिसका नाम सत राम दास,
0: आत्म राम तिस नदरी आया,
1: दास संतन पाए तिन पाया,
0: सदा निकट निकट हर जान,
1: सो दास दर का परवान,
0: अपने दास को आप कृपा करे,
1: जिस दास को सब सोजी पर है,
0: सगल संग आत्म उदास,
1: ऐसी जुगत नानक राम दास,
0: रब की आज्ञा आत्म हितावै,
1: जीवन मुक्त सो कहावै,
0: ऐसा हक तैसा उस होग,
1: सदा अनंत नहीं वियोग,
0: ऐसा स्वर्ण तैसी उस माटी,
1: ऐसा अमृत तैसी बिक काटी,
0: ऐसा मान तैसा अभिमान,
1: ऐसा रंग तैसा राजान,
0: जो बरताई साई जुगत,
1: नानक को पुरख कहिए जीवन मुक्त,
0: पार ब्रह्म के सगले ठाव,
1: जित जित घर रखे तैसा तिन्ना,
0: आपे कर्म करावन जोग,
1: भावे सोई पुन होग,
0: असरियो आप होए अंत तरंग,
1: लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग,
0: जैसी मत दे तैसा प्रकाश,
1: पार ब्रह्म करता अविनाश,
0: सदा सदा सदा दयाल,
1: सिमर सिमर नानक पहे निहाल श्लोक,
0: उस्त करे अनेक जन अंत न पारा वार,
1: नानक रचना प्रभ रची बहु विद्यनक प्रकार, अष्टपदी
0: कई कोट होए पुजारी,
1: कई कोट आचार व्यवहारी,
0: कई कोट पै तीर्थ वासी,
1: कई कोट बन प्रमय उदासी,
0: कई कोट वेद के स्रोते,
1: कई कोट तपीसर होते,
0: कई कोट आत्म ध्यान धारे,
1: कई कोट कब काव्य विचारे,
0: कई कोट नवतन नाम त्यावहे,
1: नान करते का अंत न पावे,
0: कई कोट पै अभिमानी,
1: कई कोट अंध अज्ञानी,
0: कई कोट कृपन कठोर,
1: कई कोट अभिग आत्म ने
0: कोर, कई कोट पर दर्भ को हिरहे,
1: कई कोट पर दुख न करें,
0: कई कोट माया श्रम माहे,
1: कई कोट पर देश परमा है,
0: जित जित लाभ होते तित लगना,
1: नानक करते की जाने करता रचना,
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
1: कई कोट राजे रस भोगी,
0: कई कोट पंखी सर्प उपाय,
1: कई कोट पात्र वृक्ष निपजाए,
0: कई कोट पवन पानी वै संतर,
1: कई कोट देश भूमंडल,
0: कई कोट शशि असूर नकत्र,
1: कई कोट देव दानव इंद्र शिर छत्र,
0: सगल समग्री अपने सूत धार,
1: नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार,
0: कई कोट राजस्थान सातक,
1: कई कोट वेद प्राण समृति अर शास्त्र,
0: कई कोट की रतन समुंद,
1: कई कोट नाना प्रकार जंत,
0: कई कोट की ये चिर दीवे,
1: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे,
0: कई कोट जख के निर्पिशाच,
1: कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच,
0: सबे नेरा सब हूं ते दूर,
1: नानक आप लिपतरे भरपूर,
0: कई कोट पाताल के वासी,
1: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी,
0: कई कोट जन्म है जीव है मर है,
1: कई कोट बहु जोनी फिर,
0: कई कोट बैठ ही खाहे,
1: कई कोट काले थक पाहे,
0: कई कोट की ये धनवंत,
1: कई कोट मा चिंत,
0: जय जय भाणा तह तह राखे,
1: नानक सब किश प्राप्त के हाथे,
0: कई कोट भय वैरागी,
1: राम नाम संग तिन लिव लागी,
0: कई कोट प्रभ को खोजंते,
1: आत्म मह पार ब्रह्म लहंते,
0: कई कोट दर्शन प्रप्यास,
1: जिनको मिलियो प्रभ विनाश,
0: कई कोट मांग है सत्संग,
1: पार ब्रह्म तिन लागा रंग,
0: जिनको होए आप सो प्रसन्न,
1: नानक तेजन सदा धन धन,
0: कई कोट खाणी अरखंड,
1: कई कोट आकाश ब्रह्मांड,
0: कई कोट होए अवतार,
1: कई जग की नु विस्तार,
0: कई बार पसरियो पासार,
1: सदा सदा एक एक अंकार,
0: कई कोट कीने बहु भांत,
1: प्राप्त होए प्रभ माहे समात,
0: ताका अंत न जाने कोई,
1: आपे आप नानक प्रभ सोए,
0: कई कोट पार ब्रह्म के दास,
1: जिनहो वत्या तुम प्रगास,
0: कई कोट तत्व के देते,
1: सदा नहारे एको नेत्रे,
0: कई कोट नाम रस पीव है,
1: अमर पहे सद सद ही जीव है,
0: कई कोट नाम गुण गाव है,
1: आत्म रस सुख सहज समावे,
0: अपने जन को साथ साथ संभारी,
1: नानक हे परमेश्वर के प्यारे श्लोक,
0: करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई,
1: नानक तिस बलहार ने जल थल मैयल सोए, अष्टपदी
0: कर्ण करावन करना जोग,
1: ज्योत भावे सोई होग,
0: फिर मैं ताप उताप नहारा,
1: अंत नहीं किश पारा वारा,
0: हुक्मे धार अतार रहावे,
1: हुक्मे उपजे हुक्म समावे,
0: हुक्मे ऊच नीच व्यवहार,
1: हुक्मे अनेक रंग प्रकार,
0: कर कर दिते अपनी वडियाई,
1: नानक सब में रहा समाई,
0: रब भावे मानो गत पावे,
1: रब भावे ता पात्र त्रावे,
0: रब भावे बिन सास ते रखे,
1: रब भावे ता हर गुण पाखे,
0: रब भावे ता पत उधार है,
1: आप करे अपन विचार है,
0: दोहा श्रेया का आप स्वामी,
1: खेले अंतर जामी,
0: जो भावे सो कार करावे,
1: नानक दृष्टि और न आवे,
0: वह मनुख ते क्या होए आवे,
1: ज्योतिष भावे सोई करावे,
0: किसके हाथ होए ता सब पिछले,
1: ज्योतिष भावे सोई करे,
0: मन जानत विखिया मह रचे,
1: जे जानते अपने आप बचे,
0: भरमे भूला दह जिस धावे,
1: नमक माही चार कुंड फिर आवे,
0: कर कृपा जिस अपनी भक्त दे,
1: नानक ते जन नाम मिले,
0: छिनवे नीच कीट को राज,
1: पार ब्रह्म गरीब नवाज,
0: जाका दृष्ट कछु न आवे,
1: तत्काल दिस प्रगटावे,
0: जाको अपनी करे बख्शीस,
1: ताका लेखा न गणे जगत, जगदीश
0: जीओ पिंड सब तिसकी रास
1: कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास
0: अपनी बनत आप बनाई
1: नानक जीवै देख वडाई
0: इसका बल नाही सहा
1: कल करावन सर्व को नाथ
0: आज्ञाकारी बपरा जीओ
1: जोत सभावै सोई फन थी
0: प्रभु ऊंच नीच मैं बसै
1: प्रभु सोग हर करंग हसै
0: प्रभु निंद चिंद व्यवहार
1: प्रभु ऊबक आस प्याल
0: प्रभु बेता ब्रह्म विचार
1: नानक आप मिलावन हार
0: प्रभु नृत करै बहु भांत
1: प्रभु सोए रहै दिन रात
0: प्रभु महा क्रोध विकराल
1: प्रभु सर्व की होतरवाल
0: प्रभु होए वह बड़ राजा
1: प्रभु भिखारी नीच का साजा
0: प्रभु अब कीर्त में आवे
1: प्रभु भला भला कहावै
0: ज्यो प्रभु राखै ते भी रहै
1: गुर प्रसाद नानक सच कहै
0: प्रभु होए पंडित करे बख्यान
1: प्रभु मोहन तारी लावे ध्यान
0: प्रभु तट तीर्थ स्नान
1: प्रभु सिद्ध साधक मुख ज्ञान
0: प्रभु पीठ हस्त पतंग होए दिया
1: अनक जोन परमिया परमिया
0: नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावे
1: ज्यो प्रभु भावै तिवै न जावे
0: ज्यो भावै सोई होए
1: नानक दूजा अवर न कोए
0: प्रभु साध संगत पावै
1: उस स्थान ते बौर न आवै
0: अंतर होए ज्ञान प्रगास
1: उस स्थान का नहीं विनाश
0: मन तन नाम रते एक रंग
1: सदा बसै पार ब्रह्म के संग
0: ज्यो जल मह जल आए कटाना
1: ज्यो ज्योति संग ज्योत समाना
0: मिट गए गवन पाए विश्राम
1: नानक प्रभु के सद कुर्बान श्लोक
0: सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले
1: बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी
0: जिसके अंतर राज अभिमान
1: सो नरक पाती होवत स्वान
0: जो जान है मैं जो बनवंत
1: सो होवत विष्टा का जंत
0: पाप को कर्मवंत कहावै
1: जन्म मरे भो जोन परमावै
0: धन भूम का जो करे गुमान
1: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
0: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै
1: नानकी है मुक्ति अगै सुख पावै
0: धनवंता होए कर गर्भावै
1: तरण समान का चंग न जावै
0: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस
1: पर भीतरता का होए विनाश
0: सब ते आप जाने बलवंत
1: होए जाए पसमंत
0: सेना बदे आप अहंकारी
1: धर्म राय तिस करे खुआरी
0: गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान
1: सोजन नानक दरगाह परवान
0: कोट कर्म करे हों तारी
1: शरम पावे सगले बरथारे
0: अनक तपस्या करे अहंकार
1: नरक स्वर्ग फिर अवतार
0: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
1: हर दरगाह को कैसे गवे
0: आप को जो भला कहावे
1: इसे भलाई निकट न आवे
0: सर्व की रेन जा का मन होए
1: कहो नानक ताके निर्मल सोए
0: जब लग जाने मुझते कश होए
1: जब इस को सुख नाही कोए
0: जब यह जाने मैं किस करता
1: तब लग गर्भ जोन में फिरता
0: जब धारे को बैरी मीत
1: जब लग निश्चल नाही चीत
0: जब लग मोह मगन संग माए
1: तब लग धर्म राय देश जाए
0: रब कृपा ते बंधन टूटे
1: गुरु को साधना न कहा छुटे
0: सहस कटे लग को उठतावे
1: रतन आवे माया पाछे पावे
0: अनक भोग विखिया के करे
1: नैत बतावे खप खप मरे
0: बिना संतोख नहीं को राजे
1: अपन मनोरथ फिर से सब काजे
0: नाम रंग सर्व सुख होए
1: प्रभागी किसे प्राप्त होए
0: कर्ण करावन आपे आप
1: सदा सदा नानक हर जा
0: कर्ण करावन करना हार
1: इसके हाथ कहा विचार
0: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
1: आपे आप प्रभ सोए
0: जो किश पीनो सो अपना रंग
1: तब ते दूर सब हूँ कै संग
0: दूजा देखा करे विवेक
1: आपे एका पै अनेक
0: मरे न बिनसै आवे न जाए
1: नानक सब ही रह समाए
0: आप उपदेशै समझे आप
1: आपे रचिया सब कै साथ
0: आप कीनो आपन विस्तार
1: सब कुछ उसका हो करने हार
0: पोस्ते भिन्न कहो किश होए
1: अंत अंतर एक सोए
0: अपने चलित आप करने हार
1: गौत करे रंग अपार
0: मन में आप मन अपने माहे
1: नानक कीमत कह न जाए
0: सत सत सत प्रभु स्वामी
1: गुर प्रसाद के नै बखियानी
0: सच सच सत सब कीना
1: कोट मदै के बिरले चीना
0: भला भला भला तेरा रूप
1: अत सुंदर अपार अनूप
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
1: कट कट सुनी सर उन बखियानी
0: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
1: नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक
0: संत सरन जो जन पर सो जन उदर नहार
1: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
0: संत का दुखन आरजा कटे
1: संत का दुखन जमते नहीं छुटे
0: संत का दुखन सुख सब जाए
1: संत का दुखन नरक में पाए
0: संत का दुखन मत होए मलीन
1: संत का दुखन शोभा देहीन
0: संत के हथे को रखे न कोई
1: संत का दुखन थान भ्रष्ट होए
0: संत कृपाल कृपा जे करे
1: नानक संत संग निंदक भीतर
0: संत के दुखन ते मुख पवे
1: संतन का दुखन काग ज्यो लवे
0: संतन का दुखन सर्प जोन पाए
1: संत का दुखन त्रिगत जोन करमाए
0: संतन का दुखन तृष्णा मह जलै
1: संत का दुखन सब को छले
0: संत का दुखन तेज सब जाए
1: संत का दुखन नीच निचाए
0: संत दुखी का थाओ को नाही
1: नानक संत भावे ता ए पी कत पाए
0: संत का निंदक महा अतताई
1: संत का निंदक खन टिकन न पाए
0: संत का निंदक महा हत्यारा
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा
0: संत का निंदक राज ते हीन
1: संत का निंदक दुखिया अरदीन
0: संत के निंदक को सर्व रोग
1: संत के निंदक को सदा बिजोग
0: संत के निंदा दुख मैं दुख
1: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
0: संत का दुखी सदा पवित्र
1: संत का दुखी किसी का नहीं मित्र।
0: संत के दुखी को डान लग,
1: संत के दुखी को सब त्याग,
0: संत का दुखी महा अहंकारी,
1: संत का दुखी सदा बेकारी,
0: संत का दुखी जन्म अमर,
1: संत की दुख ना सुख ते तरह,
0: संत के दुखी को ना ही ठाओ,
1: नानक संत भागता लय मिलाए,
0: संत का दुखी अद बीज ते टूटे,
1: संत का दुखी किते काज न पहुंचे,
0: संत के दुखी को उद्यान फरमाई है,
1: संत का दुखी उजड़ पाई है,
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
1: जो सास बिना अमृत की लोथा,
0: संत के दुखी की जड़ किश ना ही,
1: अपन बीजा पे ही खाहे,
0: संत के दुखी को अवर न रख नहार,
1: नानक संत भागता लय उबार,
0: संत का दुखी इं बिललाए,
1: जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए,
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
1: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे,
0: संत का दुखी छुटे अकेला,
1: जो बुआड़ तेरे खेत माहे दुहेला,
0: संत का दुखी धर्म ते रहत,
1: संत का दुखी सत मिथ्या कहत,
0: कीर्तन दुखा तुर ही पया,
1: नानक जोत सुभावे सोई थिया,
0: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए,
1: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए,
0: संत का दुखी सदा सहकाइये,
1: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइये,
0: संत के दुखी की पूजे न आसा,
1: संत का दुखी उठ चले निराशा,
0: संत के दुख न दृष्टि कोई,
1: जैसा भाव है तैसा कोई होए,
0: पया कीर्तन मिटे कोई,
1: नानक जाने सच्चा सोए,
0: सब करते सकी हो करने हार,
1: सदा सदा तिसको नमस्कार,
0: रब की उसत करो दिन रात,
1: तिसे त्यागो सास ग्रास,
0: सब कछ वर्ते तिसका किया,
1: जैसा करे तैसा को थिया,
0: अपना खेला करने हार,
1: दूसर कौन कहे विचार,
0: जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे,
1: वडपा की नानक जन से श्लोक,
0: तजो सियान पुसुर जन हो, सिमरो हर हर राय,
1: एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाए, अष्टपदी
0: मनुख की टीक बिरथी सब जान,
1: जीवन पौ एक है भगवान,
0: जिसके दिया रह अगाही,
1: पौ न तृष्णा लागे आए,
0: मारे रखे एको आप,
1: मानुख टैक्स ना ही हाथ,
0: जिसका हुक्म भू सुख होए,
1: जिसका नाम रख कंठ परोए,
0: सिमर सिमर सिमर पुरा सोए,
1: नानक बिघन लागे कोए,
0: उसत मन में कर निरंकार,
1: कर मन मेरे सत व्यवहार,
0: निर्मल रसना अमृत पियो,
1: सदा सहेला कर ले जियो,
0: नैनो बेग ठाकुर का रंग,
1: सदा संग बिन सह सब संग,
0: चरण चलो मार्ग गोविंद,
1: मिटे पाप जपिए हर बिंद,
0: हर हर कर्म श्रवण हर कथा,
1: हर दरगह नानक उजल मथा,
0: बड़ भागी ते जन जग माहे,
1: सदा सदा हर के गुण गाहे,
0: राम नाम जो करे विचार,
1: चेतन मंतगनि संसार,
0: मन तन मुख बोले हर मुखी,
1: सदा सदा जानो ते सुखी,
0: एको एक एक पछाने,
1: तुत कियो सोजी जाने,
0: नाम संग जिसका मन मानिया,
1: नानक तने निरंजन जाने,
0: गुर प्रसाद अपने आप सुजे,
1: जिसकी जानो तृष्णा बुझे,
0: साथ संग हर हर जस कहत,
1: सर्व रोग त्यो हर जन रहत,
0: आन दिन कीर्तन केवल बखयान,
1: मैं सोई निर्वाण,
0: एक ऊपर जिस जन की आशा,
1: जिसकी कटिए जन की फसा,
0: पार ब्रह्म की जिस मन भूख,
1: नानक किसे न लागे दुख,
0: जिसको हर ब्रह्म मन चित आवे,
1: सो संत सोहेला नहीं दुलावे,
0: जिस प्रभु अपना कृपा करे,
1: सो सेवक को किसते डरे,
0: जैसा सत ऐसा दृष्ट आया,
1: अपने कार्य में आप समाया,
0: सोधत सोधत सोधत सीजया,
1: प्रसाद तत् सब पूजे,
0: जब देखो तब सब शमूल,
1: नानक सो सूक्ष्म सोई स्थूल,
0: न किस जन में न किस मरे,
1: अपने चलते आप ही करे,
0: आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट,
1: आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट,
0: आपे आप सगल में आप,
1: अनक युग त्रच था प्यो था,
0: अविनाशी ना ही किस खंड,
1: धारण धार रहे हो ब्रह्मांड,
0: लख पे पुरख प्रताप,
1: आप जपाए तन नानक जाप,
0: जिन प्रभ जाता सो सो बावंत,
1: सगल संसार उदरे तन मंत,
0: प्रभ के सेवक सगल उदारन,
1: प्रभ के सेवक दुख विसारन,
0: आपे मेल लय कृपाल,
1: गुर का शब्द जप भय निहाल,
0: गुर की सेवा सो ही लागे,
1: जिसनो कृपा करे बट भागे,
0: नाम जपत पावे विश्राम,
1: नानक तन पुरख को उत्तम कर मान,
0: जो किस करे सो प्रभ के रंग,
1: सदा सदा बसे हर संग,
0: सुपाई हो वैसो होए,
1: करने हार पछाने सोए,
0: जब का किया जन मीठ लगाना,
1: जैसा सत ऐसा दृष्टाना,
0: जिसकी उपजे तिस माही समाई,
1: सुख निदान उन्हों बने।

निरंकार है न लय निरकना चाहिए जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़े है चंगा अपना कर पुन हो नीज सुधाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करें दिया ये कोर है।

चोरा यारा ते कुड़िया रखा रबा बेकार एक होंदा खा चले था दिना बिकाई कार जल था जिया पुरिया लोहाया कार आया कार।

पौड़े बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है जिन विच हो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेव की संतोखी जिन सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सो के धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

पौड़ी सच्चा साहेब एक तुझने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच।

0: हला पहला पर गड्डी लदिए पर भरिए साथ पर बेड़ी पाइए पर गड्डिए खात पढ़िए है जेते बरस बस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे की गल होर हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया ते ता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या

तू करता करना मैं ना ही जाहो करी ना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ जात में जो जोत में जात अगल कला भरपूर रहा तू सच्चा।

0: धुवा पूरा तपे का सतगिर धुवा हो काजुगरा थगन का कूड़ा गैर धुवा हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छा सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पठानी अमल किया।
1: चार वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप अब्द करनी।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आख पाए हुए प्राणा सटिए ये फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग हो वै जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे साला ही ससूत दरगे अंदर पाइये तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पड़े निदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न की वे तग आया पे बते।

नानक कूड रहया पर भो। मथे टिका तेड़ धोती का खाई, हाथ छुरी जत कसाई, नील वस्त्र पैर होवे।

0: अगे तो समत बख्शनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी वाहिगुरु सिमरन दे नाल जुड़िए जी, करिए जी शुरू। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे

हस्त खेलत तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। मंदिर देच भक्ति करदिया प्रभु दे गीत गाउंदिया, क्यों उठाए गए, क्यों बाहर कड्डे गए? क्योंकि शूद्र जाति दे सन, ते शूद्र जाति लई मंदिरां दा प्रवेश बंद सी। आप स्वयं कहंदे ने, हस्त खलित तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। हीनड़ी जात मेरी जात मराया, छीपे के जन्म मुको काहे को आया। भक्ति भाव विच भिजे गीत आप जुगारे सन, ते मंदरां विच जो कथा कीर्तन होंदा सी उस दे जो सुनन दा आप दे अंदर शौक सी, लेकिन ब्राह्मणा दा जो व्यवहार सी उस तो दुख तो के आप कहंदे ने, छीपे के जन्म मोको काहे को आया। हे प्रभु, तू छीबे दे घर मैनू जन्म क्यों दिता? क्योंकि भक्ति करन दा अख्तियार लोकी मैनू नहीं देंदे, मंदरां विचों तक्के मार के कढ़दे ने। ले कमली चलियो पलटाए, देहुरे पाछे बैठा जाए। आखिर अपना चदरा विछा के जिस दे उत्ते बैठा होया सी उन्नू संभाल के समेट के मंदिर दे पिछवाड़े जा बैठा। आप दा ही वाक है, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे, भगत जना का देहुरा फिरे। जैसे जैसे वो प्रभु दे गीत गाउंदे ने, प्रभु विचलीन होंदे ने, वैसे वैसे मंदिर फिरदा है। और मंदिर दा जो मुख द्वार सी उस दा मुंह नामदेव जी दी तरफ हो गया, मूर्तियां दा मुंह नामदेव जी दी तरफ हो गया, और पंडियां दी तरफ पिछवाड़ ला। फेर दिया नामे को देहुरा, पंडियन को पिछवाड़ ला। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा भी फरमान है, हंकारियां निंदका पिठ दे, नाम देव मुख लाया। ए मंदिर गौंडा देच अज भी मौजूद है, श्री सचखंड हजूर साहब तो गालबन 40 मील दी दूरी दे, औरंगाबाद रोड देते एक गौंडा नाम दा बहुत वड्डा तीर्थ है। इस औंडा नाम दे तीर्थ दे उत्ते ही श्री नामदेव जी महाराज ने ये प्रभु दे गीत गाए, ते आप नू तके मार के बाहर कढ़िया गया। ये मंदिर इतिहासक मंदिर है, और कस्बे दा नाम औंडा है। महाराष्ट्र दे बेशुमार तीर्थां दे चों ये अस्थान भी तीर्थ सतल करके बहुत मशहूर है, और श्री नामदेव जी महाराज दा भी अस्थान इस मंदिर दे अज बनया है। भावें आप शरीरक रूप दे जद मौजूद सन ता आप नूं धक्के मार के बाहर कढ़िया गया, लेकिन अज उन्हां दी मूर्ति मंदिर दे द्वार तों बाहर स्थापन कीती हुई है, और दूरों ही पुजारी आवाज मार देन, संत नामदेव दे दर्शन करो, संत नामदेव दे दर्शन करो। लेकिन ए अजूबा पृथ्वी ते मौजूद है कि मूर्तियां दा मुंह एक पासे है, मंदिर दा मुंह दूसरे पासे है। और ए अजूबा कहंदे ने श्री नामदेव जी महाराज करके होया, क्योंकि आप नु जब धक्के मार के बाहर कढ़िया गया, आप पीछे जा बैठे तो मूर्तियां ने भी रुख नामदेव दी तरफ ही कर लिया। खैर, महाराष्ट्र देच भ्रमण करदे हां, प्रभु गीत गाउंदे हां, आप मनुखता लई एक पवित्र माहौल बना रहे सन। दरअसल भगत दा होना ही वातावरण दा पवित्र होना है। ओदे शरीर देचों जो लहरां निकलदियां ने, तिरंगा निकलदियां ने, ओ आस पास दे माहौल नूं पवित्र करदियां ने। जैसे कि भगत कबीर दा कहना है, कबीर सो मुख धन है, जय मुख कहिए राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम। देही दा ते कहना कि एक सुरत होके जो प्रभु गीत उचारण करने ने, प्रभु सिमरन करना है, ओदे नाल ते सारा नगर पवित्र हो जांदा है, सारा शहर पवित्र हो जांदा है। तो नामदेव ने थां थां ते महाराष्ट्र देच भ्रमण करना आरंभ कीता। इस तो बाद आपने समस्त भारत दा वी रटन कीता। दहली दे जद आप आए ते आप दे
भगती भाव दे संगीत ने जद श्रोतियां दे मना ते अपना प्रभाव पाया ते आप दे आले दुआले बहुती भीड़ इकट्ठी हुई ता ओ पुराना झगड़ा शुरू हो गया जिन्हों कहने ने सत ते सता दा झगड़ा। वक्त दे सुल्तान सिकंदर लोदी नू ए गल रास नहीं आई कि एक व्यक्ति दे पिछे इतनी भीड़ इतना इकट्ठ इस तो सताधारी कई दफा खतरा महसूस करते ने कि एक व्यक्ति दे पिछे इतनी भीड़ क्यों है ते ए भीड़ किसे वक्त साडे लई दुखदाई साबित ना होवे। लिहाजा श्री नामदेव जी महाराज नू पकड़ के हिरासत दे च ले लिया गया और सुल्तान ने कहा कि मेरे घर दी कपिला गऊ मर गई है, इस नू तू अपनी शक्ति नाल जिवा दे ते तेनू छड़ांगा वरना नहीं। तो नामदेव जी महाराज कहंदे ने ए जन्म ते मरण प्रभु दे हत्थ च, हमरा किया कछु न होए कर है राम होए है सोए। ए जन्म ते मरण राम दे हत्थ दे च है न के मेरे हत्थ दे च है। सुल्तान क्रोध दे च आया गुस्से दे च आया और जेल दे च नामदेव जी महाराज नू बंद कर दिता गया। दहली दे पतवंतिया ने आखिर सोचिया कि कीमती इंसान है भगत है और ऐसा ना होवे कि राज हठ दे सामने इस दी कीमती जान चली जाए। तो सारे पतवंते सुल्तान नू समझान लई गए जद भी कदी राज हठ ते भगती दा हठ आपस दे च टकरांदा है तो वाकई राज हठ लई एक कयामत ही नाजल होंदी है। ऐसा आदकाल तो चले आ रहे भगत हट करदा है अपनी सच्चाई ते पर सताधारी हट करदा है अपनी सता ते अपनी झूठ ते। जैसे के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी कहने ने तुरा तर्क ताजी ब मकरो राया मरा चारा साजी ब सिदको सफा। मैं सिदक ते खड़ा सच्चाई ते खड़ा सफाई ते खड़ा ए सुल्तान तू झूठ ते खड़ा है फरेब ते खड़ा है फरेब ते खड़ा तू इस तो अगा पिछा नहीं होना चाहता है तेरा हट है पर सच ते मैं खड़ा मैं भी इधर उधर नहीं होना चाहता ये मेरा हट है। सत ते सताधारियां दी आद काल तो ही नहीं बने सताधारी सतवादियां दे गुण उन्हां दे आले दुआले श्रद्धालुआं दी भीड़ नू वेख के औखे हुंदे रहने ते सतवादी सताधारियां दे झूठ नाल कदी सहमत नहीं हुंदे रहे तो नामदेव भी सहमत ना होवे। सुल्तान ने कह दिता नामदेव नू करड़ी तो करड़ी सजा देंगे लेकिन जब दिल्ली दे पतवंते सुल्तान दे कोल पहुंचे ते कहन लगे एक कीमती मनुख है इस दी होंद मनुखता दी तामीर देच सहायक होंदी है मददगार होंदी है ये ते चंदन दा वृक्ष है चलदा फिरदा खुशबुआ वंडदा है शीतलता वंडदा है इनू छोड़ दो। सुल्तान कहंदे ने मैं किसे कीमत ते भी नहीं छड़ना एक कोई शर्त है मोई हुई गऊ ए जवा देवे। पर मोई हुई गऊ नू जवान तो नामदेव ने इनकार कीता है। दिल्ली दे धनाढ़ सेठा ने भगता ने आखिर सुल्तान नू कहा कि नामदेव दे शरीर दा जो वजन है इतने वजन दा साडे कोल सोना ले लो चांदी ले लो नामदेव नू छड़ दो। ता सुल्तान कहिंदा है माल लौं ता दोजक भरो मैं दोजकां दे च नहीं जाना मैं धन माल लेके इस काफर नू नहीं छड़ना। तो सारे पतवंते हाथ जोड़ के सुल्तान नू कहंदे ने मोई होई गऊ नामदेव नहीं जवाना चाहते धन माल तुसी नहीं लेना चाहते तो कोई तीसरा तीसरा कड्डो कोई तीसरा मार्ग कड्डो ताकि नामदेव की बंद खलासी हो सके। तो तीसरा तीका सुल्तान ने कहा एक कोई है ए राम कहना छड़ देवे ए खुदा खुदा दा रटन करे। नामदेव नू जदे गल आखी गई त
ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਠ ਤੇ ਕਾਇਮ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਛੋੜ ਰਾਮ ਕੀਨਾ ਭਜੇ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਐਸੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਧ ਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦ ਕਾਰਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਧਾਰਾ, ਕਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਮਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਣੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਕਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਮਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਣੀ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਤੋ ਮਨੀ, ਦਰਿਆਓ ਤੂੰ ਦਹਿੰਦ ਤੂੰ ਬਿਸਿਆਰ ਤੂੰ ਧਨੀ, ਦੇਹ ਲੇਹ ਏਕ ਤੂੰ ਦਿਗਰ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਬੀਨਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਕਰੀ, ਨਾਮੇ ਚੇ ਸੁਆਮੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਤੋਂ ਹਰੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ, ਕਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਮਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਣੀ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਤੋ ਮਨੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਧੁਨ ਰਟਦਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਕਰੀਮ ਕਰੀਮ ਰਹੀਮ ਰਹੀਮ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਦ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਚ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਖਾਂਗਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਚ, ਜੇ ਅੱਜ ਆਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜਬਰ ਹੇਠ, ਅੱਜ ਆਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਤੋ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਦਬਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਾਂਗਾ, ਮੌਜ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਤ ਘੜੀ ਜਬ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ, ਅਜੂ ਨਾ ਆਏ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਧਨੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਛੋੜਦਾ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਨਕਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਈ, ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਊ ਉੱਠ ਖੜੋਈ, ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਸੂਲ ਪੈ ਗਏ, ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਧਰ ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਊ ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਅਥਾਹ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਛਤਾਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਆ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜਾ। ਹਰ ਯੁਗ ਦੇ ਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਰ ਵਾਪਸ ਪੰਡਰਪੁਰ ਆਏ। ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਨਾਲ ਉਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਔਂਡੇ ਦੇ ਚ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਛੀਂਬਾ ਨੇ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੰਭ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ, ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੇ ਗੀਤ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖਿਲੇਰੇ ਕਿ ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, धन गुरु नानक साहब कृपालु जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, उस परमात्मा दी वाहिगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परि

गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका सिर जुलां जे मुंह पिरी मिलन के अपने तन नूं तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हथ है किन्ने ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बल दियां ने। तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका जे पैरां नाल चलदियां होया थक जावां सिर जुलां मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली बाहर दी भटकना तो बचा सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना इना खडियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरा ने तन दे अंगा ने की विगाड़िया तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द ए भी वरतने हां कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने साच कहो सुन लेहो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं इत्थों तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल जमीन दे विच पैदा होए पौधे जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नूं टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है। प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती हुई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई वारी अर्ज करना हुंना हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है कहन लगे सरवर कमल किरण आगासी बिगसै सहज सुभाई। हुण कमल दा फुल जिहड़ा ओ सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा ओ आसमान विच है दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक इहो जी शक्ति टिका दित्ती ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी ओहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। ओह किहड़ी ताकत है ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਕਨਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। हर एक अंदर परमात्मा ने ए ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा टिका दिती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है दोनां दी दूरी है ना ता चकोर नूं किसे

और समदृष्ट हो गया। हुण जिथे तक वह वेखदा है परमात्मा नूं वेखदा है, और जिथे तक सुनदा है जो बोलत है मृगमीन पंखेरू सो बिन हर जापत है नहीं हो। ए प्रभु जितने पंछी पे बोल देन सब तेरी आवाज। हुण ते मैनूं इंज लगदा है ये भी तेनूं ही जपदे पए ने, और कुछ नहीं। ये सारियां आवाजां हे प्रभु इहदे च वी तूं है, ये सारे रूप इहदे च वी तूं है, ये अवस्था बन जाती। गुरु नानक देव जी महाराज कहते जो बोलत है मृग मीन पंखेरू सो बिन हर जापत है नहीं होर। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की मैं समदृष्टि थोड़े सामने रखा, समाप्ति करना समा हो गया। महाराज कहते कत्तो हूं सुचेत होए के चेतना को चार कियो, कत्तो हूं अचिंत होए के सोवत अचेतो। श्री मुखवाग पातशाही दसवीं अकाल उस्तत। हे प्रभु किधरे ते तू बड़ा सावधान सुचेत है, बड़ा स्याणा है। कतहु सुचेत होए के चेतना को चार कियो, तू अपनी चेतना नु चार कहंदे ने, बड़े सुंदर बड़े सोने सोने गुणा नाल संवारे है शिंगारे है। कतहु अचिंत होए के सोवत अचेत हो, किधरे तू बिल्कुल मूड अचेत, कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। हैरानगी कतहु भिखारी होए के मांगत फिरत वेक, कहू महादान होए के मांगे ओ धन दे तो। हे प्रभु कमाल दी गल, किधरे तू मंगता बनया है भिखारी, हाथ फैलाया टुकड़ा टुकड़ा मंगता पे। एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज विडाणा, गुरु रामदास। हे चोजी पातशाह किधरे तू दाता बनया किधरे भिखारी है, सब तेरे ही चौजन है। समदृष्टि कतहु भिखारी होए के मांगत फेरत भीख, कहु महादान होए के मांगे ओ धन दे तो। कहु महाराजन को दीजत अनंत दान, कहु महाराजन ते छीन चित ले तो। कहु बेद रीत कहु तांस्यं विपरीत, कहु त्रिगुण अतीत कहु सरगुण समेत हो। इन्हां सैकड़े सवैया विचों दो चार मैं थोड़े सामने रखा, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, क्योंकि दसवें पातशाह नूं बहुत घट समझिया गया, बहुत घट पढ़िया गया, बहुत घट सुनिया गया। इस वास्ते मैं थोड़े सामने रखदा पिया। सिंगापुर विच एक सज्जन सिंधी मैनूं कहण लगा, गुरु नानक बड़े मीठे गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह गुरु तो हैं पर बड़े कड़वे हैं, बहुत कड़वे हैं, हमारा तालमेल नहीं बैठता, सिद्धे लो। फिर मैं उन्होंने स्वभाव कह दिता, जे इतने कड़वे ना होंदे तो भारत विच हिंदू धर्म ते रहना ही नहीं सी, खत्म हो जाना सी। कवि संतोख सिंह जी कहते ने, छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचीलता कतेबन कुरान के। पाप ही परपक जाते धर्म दशक जाते, बरन गरक जाते सहत विधान के। देवी देव देवरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मित जाति कथा वेदन पुराण के। श्री गुरु गण गोविंद सिंह पावन परम सूर, मूर्त ना होती जो पे करना निधान की। ऐसी बख्शिश भरी मूर्ति ना होती, गीता पुराण वेद खत्म हो जाने सन, केवल कुरान रहनी सी। जनेऊ तिलक मंदिर ठाकर द्वारे खत्म हो जाने सन, एक कोई मस्जिद रहनी सी। इति धन गुरु गोविंद सिंह जी दी करामात, उना दी मेहरबानी, उना दी कुर्बानी, उना दी तपस्या, उना दी देन। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की समदृष्टि नूं नहीं देखिया गया, क्योंकि असी सुनाया नहीं, असी समझाया नहीं। साहिब कहिंदे कहूं जच गंधर्व उरग कहूं विद्यादर, कहूं भय केनर पिसाच कहूं प्रेत हो। हे प्रभु किधरे तू महाकविए, किधरे तू महासंगीतकार, बहुत बड़ा संगीतकार। वही गल जो गुरु नानक कहिंदे गुरु गोविंद सिंह, पर हे प्रभु किधरे तू

0: भूत प्रेत हैं, पिशाच हैं, शरीर ही तेरे कुल नहीं, रूह भटक दी पई। कहूं जच्छ गंधर्व उरग कहूं बिदे आदर, कहूं भय किन्नर पिशाच कहूं प्रेत हो, कहूं होए के हिंदू आ गायत्री को गुप्त जप्यो, कहूं होए के तुरका पुकारे बांग देत हो। हे प्रभु किधरे तू हिंदू है, तू ही है और कोई नहीं है, तू ही है। गुफा दिच बैठ के गायत्री दे मंत्रां दा जप्या करदा है, पर हे प्रभु किधरे तू मुल्ला है, तुरक है, मुरारे ते चढ़ के बांग पिया देना। गुफा दिच बैठ के मंत्रां दा जप करन वाले हे प्रभु तू ही है, मुनारे ते चढ़ के बांग देन वाले हे प्रभु तू ही है। कहूं को बकाब होए पुराण को, पढ़त मत कतहूं कुरान को, निदान जान लेत हो, कहूं बेदरीत कहूं तांस विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत कहूं सरगुण समेत हो। हे प्रभु मैं देखदा किधरे तू पुराणा दा पंडित है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा ज्ञाता है, पर किधरे तू कुरान दा हाफिज है, तू ही है और कुछ नहीं, तू ही है। इना सवैया दी लड़ीवार जे मैं व्याख्या की थी, समा अपने ढंग नाल चला जांदा है। एक सवैया होर रखदे आ थोड़े सामने कवित। कहूं गीत के गवैया, द्वापुर दे चली गई बिरती, धन गुरु गोविंद सिंह। कहूं गीत के गवैया, कहूं बेन के बजैया, हे प्रभु किधरे तू मधुर गीत गाना है, ते मुरली बजाना, बांसुरी बजाना, धन गुरु गोविंद सिंह। कहूं गीत के गवैया, कहूं बेन के बजैया, कहूं नृत्य के नचैया, कहूं नर को आकार। किधरे आकार तेरा पुरुष दा है, बड़ा सोना नृत्यकार है, बांसुरी बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। कहूं वेद बानी, कहूं कोक की कहानी, कहूं राजा कहूं रानी, कहूं नार के प्रकार। पर हे प्रभु किधरे तू नारी दी तरह, नर दी तरह नहीं है, स्त्री दी तरह है, पुरुष दी तरह नहीं है। किधरे वेद बानी विद्या नाल भरी हुई, ज्ञान नाल भरे हुए ग्रंथां दियां कहानियां तू कर रहे हैं, पर किधरे कोक की कहानी। आपदी ज्ञातली अर्ज करा, कोका पंडित ने काम सूत्र एक ग्रंथ लिखे, उस वक्त दे कुछ नैतिक पुरुषा ने, सियाने पुरुषा ने कहा सी, तू की लिख रहे हैं, तू ऋषि है, तू संत है, काम ते लिख रहे हैं। उन्हें आख्या जे क्रोध ते लिखिया जा सकता है ते बोलिया भी जा सकता है, हंकार ते लिखिया जा सकता है ते बोलिया भी जा सकता है, लोभ ते लिखिया जा सकता है ते बोलिया भी जा सकता है, मोह ते लिखिया भी जा सकता है ते बोलिया जा सकता है, काम ते क्यों नहीं लिखिया जा सकता ते क्यों नहीं बोलिया जा सकता। उदी दलील से आखिर जद भी किधरे मनुख गिरदा है तो ना पंजा करके ही गिरदा है, और जिस करके ज्यादा गिरदा है, अधिक गिरदा है, उदी जानकारी मनुख नु होनी चाहिए, होनी चाहिए। उन्हें इतना वड्डा ग्रंथ लिखिया काम सूत्र, और आप सुन के हैरान हो गए, उस दे जेड़े कुछ पहलू दसम ग्रंथ दे च मिलते हैं। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे 24 अवतारां दी जो मैं कथा लिखी है, मैं अनुवाद कीता है, टीका कीता है, ये मेरे अपने ख्याल नहीं। दसम कथा भागवत की, पाखा करी बनाए, अवर वासना नाहे प्रभ धर्म युद्ध के चाहे। मेरी कोई वासना नहीं, बस मैं ते धर्म दा युद्ध करन वाला, प्रभु नाल जुड़न ते जोड़न वाला, पर मैं प्राचीन धर्म ग्रंथां दा ये टीका कीता है, अनुवाद कीता है, ताकि मेरे खालसे नूं जगत नूं पुराने धर्म दा, पुराने समाज दा, पुराने लोकाचार दा पता होवे, ज्ञान सहन सरदान दे इंद्र रोवाया, परस राम रोवे घर आया। एक शब्द है गुरु नानक देव जी मां, ये परस राम कौन सी, इंद्र कौन सी, ये जनमेजा कौन सी, अजे सरोवे बिखिया खाए, ऐसी दरगे मिले सजाए, ये सारे कौन सन। इति पुराण पढ़ने पैणगे, पुराणक प्रसंग पढ़ने पैणगे, जानना पैगा। बहुत कच्चे दिल दिमाग दे बंदे सिख जगत दे अपने आप नू रैबर मनन लग पे ने, ओदे नाल सिख धर्म संकीर्ण होके रह गया, जबकि इस तो वड्डा और कोई विशाल धर्म नहीं सी। एदा सबूत धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, सारे भगत ते बैठे, बांग देन वाला भी बैठा है ते मुरली दी तान छेड़न वाला भी बैठा है, सब कुछ मौजूद है। खैर मैं लमकावा ना, सतगुरु कहंदे ने मेरे ख्याल नहीं ने, मैं टीका कीता है, अनुवाद कीता है। क्यों? ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण नु पढ़ांदा सी शूदर नु नहीं, ते ब्राह्मण जिहड़ी विद्या पढ़ांदा सी संस्कृत सी बड़ी बेखम, ओ हुण लोक भाषा नहीं रह गई सी, किसी वक्त सी, किसी वक्त सारी संस्कृत बोलदे सन, समां दे नाल भाषावां बदलदियां, अज पंजाबी दा रूप भी नहीं रह गया, पंजाबी दे च बहुत सारे अल्फाज होर दे होर आ गए, ये भी मैं अर्ज करदे हां। लहिंदी पंजाबी, चढ़दी पंजाबी अलग अलग है, पाकिस्तान दे विच पंजाबी बोलदे ने, साडी पंजाबी नालों भिन्न हो गई है, बिल्कुल भिन्न हो गई। मैनूं चंगी तरह याद है, श्रोमणी कमेटी ने एक दफा दास दी सेवा लई ननकाणा साहब गुरु नानक देव जी महाराज दे गुरपुरब ते, वे उत्थों दी मंग आई है, टीवी ते प्रोग्राम जाना है पर उर्दू दे च कथा करनी है, लैक्चर देना है, भी तुसी तिन्ने दिन गुरुद्वारे च उर्दू च बोलना, ठीक। और उस सेवा मैं खुशी नाल कबूल की, मैं कहा बड़े दिनों बाद सतगुरु दे उस पावन स्थान दे दर्शन नसीब होणगे। बड़ा भारी इकट्ठ, राय बुलार दी जिहड़ी संतान भट्टी खानदान वह भी सारे बैठे सन, रात नूं भी दास हाजरी भरदा हुंदा सी, वह जिहड़ी भट्टी खानदान है राय बुलार दी होर सारे, वह कहण लगे रात नूं तुसीं पंजाबी च ही बोले, चंगा रात नूं मैं पंजाबी च बोलिया, मेरे कमरे चो मुसलमान वीर आ गया, भई असी ते थानू हाथ जोड़ के आख्या सी, अरजोई कीती सी पंजाबी च बोलो, तुसी पंजाबी च नहीं बोले, मैं कहता भई पंजाबी च बोले हां, कहिंदे इह कीड़ी पंजाबी है, बोल लैंदी पंजाबी बोल, इह कीड़ी पंजाबी, कहिंदे साडे पल्ले ते नहीं कुछ पिया। मैं कहा ठीक है, फिर मैं उर्दू च ही बोलांगा, उर्दू ते तुसी समझ लैंदे, लैंदी पंजाबी, भावे लहिंदी पंजाबी मैं बोल सकदा, उस इलाके चो आया, पर हुण आया पंजाब 51 साल हो गए, लड़खड़ा सकदा सी मैं, इस करके नहीं बोलिया, मैं किधर लफ्जां दा बेलफ्ज मैं कर सकदा, अशुद्धि हो सकदी है, तो हुण जिहड़ी पंजाबी मैं इसे च बोले, बोलियां ते बदलदियां, भाषावां बदलदियां ने, संस्कृत लोक भाषा नहीं रही सी, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लोक भाषा दे ब्रिज भाषा दे हिंदी दे अनुवाद कीता, उन्हां सारेयां दा सिख जगत दे बिखाद खड़ा हो गया, ए गुरु गोबिंद सिंह दे बोल नहीं हो सकदे। हुण कौन दसे, कोका पंडित ठीक कहिंदा है, जे क्रोध दे उतार चढ़ाव नूं बयान कीता जा सकदा है, किधरे किधरे करोड़ क्रोध मनुख नूं पशु बना देंदा है, पागल कर देंदा है, जे लोभ दे उत्ते व्याख्या कीती जा सकदी है, ते साहिब कहिंदे ने लोभ ते मनुख नूं कूकर जैसा बना देंदा है, कुत्ते जैसा बना देंदा है, ज्यों कूकर हरकाया तावे दे दिस जाए, लोभी जंत न जाने पाखा बख सब खाए, भयो लोभ संग होरा, लोभ मनुख नूं हलकाया कुत्ता बना देंदा है, हलका कुत्ता अपने मालक नूं भी वड्डण लग पैंदा है, पागल कुत्ता, लोभ ते पागल करके रख देंदा है, सीमा तो वधे होया लोभ मनुख किसे नूं भी धोखा दे सकदा है, सीमा तो वधे होया हंकार मनुख नूं जालम बना के रख देंदा है, और सीमा तो वधे होया काम मनुख नूं भ्रष्ट करके दुराचारी बना देंदा है, अगर पुरुष है तो व्यभिचारी हो जाएगा, अगर स्त्री है तो गनका हो जाएगी, वैश्या हो जाएगी, गुस्ताखी मां, इसका खुलासा किया, इसकी व्याख्या की। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल उस्तत विच फरमान करते हैं, हे प्रभु कहूं गीत के गवैया, कहूं बेन के बजैया, कहूं नृत के नचैया, कहूं नरको आकारो, कहूं वेद बानी, किधरे ते तू वेदां दा पाठ पिया करदा है, ज्ञान दे धर्म ग्रंथ पिया पढ़दा है, कहूं कोक की कहानी किधरे कोक शास्त्र पे पढ़ना काम सूत्र पे पढ़ना काम सूत्र दी विचार चल रही है किधरे राम दे गीत ते किधरे काम दे गीत और तू ही है हे प्रभु तू ही कहूं बेदवानी कहूं कोक की कहानी कहूं राजा कहूं रानी कहूं नार के प्रकार हो कहूं बेन के बजैया कहूं धेन के चरैया किधरे गौवा पे आचारना है श्री कृष्ण दी तरफ इशारा द्वापर दे सतगुरां दी सुरत चली गई कहूं बेन के बजैया कहूं धेन के चरैया कहूं लाखन लवैया कहूं सुंदर कुमार हो शुद्धता की शान हो के संतन के प्राण हो के दाता महादान हो निर्दोखी निरंकार हो हे प्रभु निरंकार तेरे इतने रूप इतने रूप हम इस सवैये में थानू सुनांदा जावा तेवें सारी रात लंघ जाएगी मुख्तसर मैं अर्ज कर समाप्ति कर इस सारे रूप कलगीधर पातशाह बयान कर देना अज तक ते आख्या गया है परमात्मा प्रकाश रूप है प्रकाश रूप है पर जाप साहब विच महाराज कहिंदे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे हे प्रकाश दे रूप परमात्मा तेनू नमस्कार करदा पर अंधेरा भी तेरी शक्ति तो बिना नहीं हो सकता मैं इसनु भी मत्था टेकदा नमस्कार इतनी समदृष्टि जद भी किसे दा सुनिया होया भरोसा बनता है ते भरोसा भावना बन जाता है भक्ति बन जाता है वो समदृष्ट हो जाता है चाहे हिंदू वे चाहे मुस्लिम वे चाहे सिख वे समदृष्ट हो जाएगा ब्रह्म ज्ञानी उदी दृष्टि समदृष्ट हो जाती है ब्रह्म ज्ञानी सदा समदृष्ट ब्रह्म ज्ञानी की अमृत दृष्ट वो वास्तविक समदृष्ट हो जाता है सारिया नु इको जिहा सम बराबर बराबर करके देखण लग पैंदा है इसे तरीके नाल एक मुस्लिम फकीर अमीर खुसरो इंज बयान कर देता है बेखुदी में हम तो तेरा दर समझ कर झुक गए अब खुदा जाने वो काबा था या बुतखाना ए प्रभु हुणे तू आप फैसला करो मंदिर सी के मस्जिद सी तेरे गीत हो रहे सन तेरी गल हो रही सी मेरा सिर झुक गया मैं मत्था टेक दिता मैं सजदा कर दिता बेखुदी में हम तो तेरा दर समझ कर झुक गए अब खुदा जाने वो काबा था या बुतखाना ये ऋषियां नालों घट गल नहीं है ब्रह्म ज्ञान दी शिखरता नूं छूंदी है पर धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने अक्सर भरोसा डोल जांदा इस वास्ते अरदास है डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ अवल ते कोई बिरला ही सुनदा स्रोता सुनना ते सुनिया होया अगर वाकई मन ने मन लिया सुनिए मनिए नहीं ते की सुनिया मनिया नहीं ते की सुनिया मैं एक दफा फिर दोहरावा खादा होया भोजन जो शरीर दे विच रह जांदा है ओही खून बनदा है सुनिया होया गुरु दा वचन जो मन मन लैंदा है ओही मन दा हिस्सा बनदा है वरना नहीं बनदा नहीं बनदा ओ भरोसा बन जांदा है विश्वास बन जांदा है पर मनुख खतरे च होवेगा भरोसा डोल सकदा है विश्वास डोल सकदा है सुनदा रहा मनदा रहा ते भरोसा वद्दा गया अगर ये भावना बन गया भक्ति बन गया हुण इहदे शरीर दे टुकड़े टुकड़े ते हो सकदे ने तां भरोसा नहीं डोलेगा जो कुछ सर्वन कीता है धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे चरणां च अरदास बिने है सतगुरु थोड़ा सुनिया होया मनण तक पहुंचावे मनना दृढ़ भरोसा बन जाए विश्वास बन जाए ते विश्वास भक्ति बन जाए भावना बन जाए सुनिए मनिए मन कीता भाव अंतरगत तीरथ मल्लाओ यही अंदर दा तीरथ है सारे पापा नु धोल देने माघ पुनीत भई तीरथ अंदर जाने यही अंदर दा तीरथ है सारे दुख मिट जाने सारे पाप मिट जाने साहिब इस तरह दी निर्मलता पवित्रता ते आनंद आप जी दी झोली च पावन वाहेगुरु जी का खालसा
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale Washington.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ। ਰਾਜਨ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਹੁਣ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਓਕਰਾ ਲਵੋ 2.49 ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ, 2 ਪਾਉਂਡ ਪਲੇਨ ਗੁੜ 2.98 ਨੂੰ, ਵੱਡਾ ਜੰਬੋ ਸਾਈਜ਼ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ 2.98 ਨੂੰ, ਧਨੀਏ ਦੀਆਂ 2 ਗੁੱਛੀਆਂ 1.29 ਨੂੰ ਅਤੇ 4 ਪਾਉਂਡ ਇੰਡੀਕਨ ਸਾਬਤ ਲਾਲ ਮਸਰ 2.98 ਦਾ ਬੈਗ।
1: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.

0: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: So the Musia baby, yeah.
2: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट।

ये जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी ना है, जन्म तो अखां दे खुलदियां ही मनुख दियां अखां कुछ खोज रही ने, लग रही ने। कुछ विद्वान ऐसा कहने एक तलाश का ना ही मनुख है और मनुख है जीवन भर दी तलाश। जन्म तो ही मनुख की चेतना मनुख दे प्राण कुछ लभ रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं। खोज खोज के जो लभे है जो मिले है उस नाल तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति किवें होनी है इसका पता भी कोई नहीं, इसका बोध भी कोई नहीं। तो तलाश जारी है जीवन दर जीवन जन्म दर जन्म अनंत काल तो। इस वास्ते कुछ विचारक कहने ने अनंत तलाश का ना ही मनुख है, मनुख है एक तलाश का ना, कुछ खोज रहे कुछ लभ रहे। दोहरावा मैं, खोज खोज के जो लभे है उस नाल तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति किवें होनी है इसका पता भी नहीं, इसका बोध है। फिर विद्वान कहने ने मनुख तृप्ति लभ रहा है, तृप्ति तो बिना और कुछ भी नहीं चाहिए। मनुख रजेवा लभ रहा है, रजेवे तो बिना मनुख नु और कुछ भी नहीं चाहिए। जो रज जाए उन्हों राजा कहने ने, राजा दे अर्थ जो रज गए और कोई इस दे अर्थ नहीं। जो रज गया राजा, जो भूखा है भिखारी, तलाश है राजा होने की, जमया भिखारियां की तरह जीविया भिखारियां की तरह, यकीन जानो मर गया भिखारियां की तरह। मरदे दम तक तलाश ते जा रही है, खोज ते जा रही है। खोज खोज के जो लभे है उस नाल ते रजेवा होया नहीं, तृप्ति होई नहीं। तो जो रजेवा ही नहीं होया तो फिर राजा नहीं है, कि जे राजा नहीं है तो फिर भिखारी है। जे मंग जा रही है तो मंगता है, जे भुख जा रही है तो भिखारी है। भुखा भिखारी होता है, रजे होया राजा होता है। प्रथम मनुख की खोज का केंद्र जमीन ए धरती रही है। धरती ने मनुख की झोली विच अन्न पाया, धन पाया, तन दियां जितनियां लोड़ां ने इहदी झोली नूं भरे, लेकिन जमीन मनुख नूं रजा नहीं सकी, रजा नहीं सकी, तृप्ति दे नहीं सकी। इतनी जमीन दे होंदिआं मनुख भुख है, मनुख भुख है। मैं फिर अर्ज करां, भुखे नूं ही भिखारी कहिंदे ने, रजे होए नूं ही राजा कहिंदे ने। रज गए राजा, अजे भुखा है भिखारी। भुख ते मंग ते मजबूर करेगी, कुछ और चाहिदा और चाहिदा और चाहिदा। अनंत जन्मां तों ए भुख जारी है। तन दियां लोड़ां ने, लोड़ां बड़ी सीमित ने। मन का लोभ है, लोभ सीमित नहीं है, नहीं है। ज्ञानपूर्वक सरवण करना। तन दियां लोड़ां कोई बहुत ज्यादा नहीं, जो पशुआं दी लोड़ां ने वही साड़ी लोड़ है। पर तन दी लोड़ नूं जद मन लोभ बना लैंदा है, इहदे ते निक्का जिहा मैं उदाहरण दे दिया। जैसे भोजन दी भुख है, ठीक है मनुख दो रोटियां तीन रोटियां खा लेगा, चलो चार पांच खा लेगा, तृप्त हो गए, तन ते रज गए, तन ते राजा हो गए। लेकिन मन कहता है स्वाद ते आ रहा जे और खाई, भुख नहीं है ये खा रहा है, ये लोड़ नहीं है लोभ बन गया, ये तन दी लोड़ नहीं ये मन दा लोभ बन गया। इस वास्ते कई ते कहने ने की करिए, पेट ते भर गया पर मन नहीं भर गया, मन भरदा भी नहीं। क्यों? तन दियां लोड़ां मन दियां लोड़ां ही नहीं है, पर तन दियां लोड़ां नूं
भ्रांति करके मन ने अपनिया लोड़ा समझ दे। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा, जैसा मन मन ले पर मन ले। आप दी ज्ञात ले अर्ज करा, जो मन मन लेंदा है वो है, जो मन नहीं मनता वो मन दी दुनिया च नहीं है। सवाल ए नहीं है कि वो वस्तु वो हस्ती है या नहीं, सवाल ए नहीं, सवाल ए है मन मनता है कि नहीं। अक्सर मनुख कह देंदा है पढ़िया ते है पर की करिए मन नहीं मनता, सुनिया ते है पर की करिए मन नहीं मनता, वेख्या ते है पर की करिए मन नहीं मनता। जो मन मनता ही नहीं वो मन का हिस्सा नहीं बनेगा। मन का हिस्सा वही वस्तु वही हस्ती बनती है जिन्हों मन मन लेता, मन मन लेता, मन पदार्थ नू मन लेता है परमात्मा नू नहीं मनता, मन परिवार नू मन लेता है निरंकार नू नहीं मनता। एक बहुत वड्डी सच्चाई है जिन्हों खुले दिल नाल कबूल करना है। मन धन नू मन लेता है मन धर्म नू नहीं मनता, मन पूरे दे पूरे परिवार नू मन लेंदा है संसार नू मन लेंदा है मन करतार नू नहीं मनता। जी तुसी आखो साडा मन मनदा है क्योंकि गुरुद्वारे आया, मन मनदा है ताई ते आया। कोई मनुख कह सकदा सी मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, कथा कीर्तन सुन रहे हैं, मन मनदा है। गुस्ताखी माफ के माफ कर देना, गुरबाणी इस तरह कहती है कोई लखां करोड़ां च इक अद्धा मन मनता है बाकी नहीं मनता। इस संबंध च मैं दो श्लोक थोड़े सामने रखने हैं ताकि गल पूरी स्पष्ट हो जाए। ये दो श्लोक एक ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का, एक भगत सिरमौर श्री कबीर जी का। ये दो श्लोक जिन्हां बाणियां विच हैगे ने उन्हां बाणियां का सिरलेख इको ही है, गौड़ी महला पंजवां बावन अखरी। धन गुरु अर्जन देव जी का इत्थे श्लोक बावन अखरी बाणी का नाम है, गौड़ी श्री कबीर जी बावन अखरी। अखरां दी महिमा दे उत्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने पट्टी लिखी है आसा राग विच, गुरु अमरदास जी ने पट्टी लिखी है आसा राग विच। अखरां दी महिमा दे उत्ते बावन अखरी लिखी है गौड़ी राग विच गुरु अर्जन देव जी ने, और गौड़ी राग विच भगत कबीर जी ने अखरां दी महिमा गाई है। क्यों? आवाज ते पशुआं कोल भी है, कौवा भी काएं काएं करता है, शेर भी करे है, गऊ भी बोल, पंछी भी चहचहाते हैं। आवाज ते पशुआं कोल भी है, अल्फाज नहीं है। धुन ते पशुआं कोल भी है, अखर नहीं है, अखर नहीं। तो धुन तो आवाज तो पशु दी होंद दा ते पता चल जाए, और केड़ा पशु है यह भी पता चलता है भी ये शेर की गर्जन, इस आवाज तो ही पता चलता पे कोयल है, इस आवाज तो ही पता चलता पे कौआ है। आवाज तो यह तो बोध होंदा है कि आवाज किस दी है, पर जिस दी आवाज है उसनों पूछिए तू कितों आया, कितने जाना है, की लभ रहा है, इस सब कुछ कहने वास्ते उदे कोल अल्फाज नहीं है, अक्षर नहीं है। इस वास्ते पशुआं दा सारे दा सारा विकास रुकया, हजारां साल पहले जिथे पशु सन अज भी उत्थे ने, पर हजारां साल पहले जिथे मनुख सी अज नहीं है। इसका जिन्ना बैरूनी विकास होया है सब अखरां दे आसरे दे होया है, अखरी नाम अखरी सारा, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण वाण
अखड़ा सिर संजोग वखा। शिक्षा दी साहब ते कहंदे ने मनुख नूं वेख के कुछ भी नहीं पता चलता ये मनुख की है। वेख के इतना ही पता चलता है इतनी इहदी उम्र कितनी होवेगी। उम्र का बोध हो जाता है, रंग का बोध हो जाता है, नैन नक्श का बोध हो जाता है, कद बुद्ध का बोध हो जाता है, कपड़े की पाए ने कैसे पाए ने इसका बोध हो जाता है। लेकिन यह मनुख की है कुछ भी नहीं पता चलता। सेक्स का पता चल जाता है, मेल है फीमेल है इन्ना पता चल जाता है, स्त्री है पुरुष है इतना ही पता चलता है। पर यह है कि रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है, मूर्ख है, सियाणा है, शांतमयी है, क्रोधी है, धार्मिक है, अधार्मिक है, वेख के कुछ भी नहीं पता चलता, उक्की नहीं पता चलता। फिर किस तरह पता चलता है मनुख नूं किवें पढ़िए यह मनुख की है। साधी कहंदे ने तां मर्दे सुखन ना गुफ्ता भाषण ऐबो हुनर निहुफ्ता भाषण। 5-10 दिन उसकी संगत करिए उसकी बोल चाल तो पता चल जाता है धार्मिक है कि अधार्मिक है, मूर्ख है कि सियाणा है, क्रोधी है कि शांतमयी है, जल्दबाज है कि धीरजवान है। ये 10-12 दिन उसकी संगत करदे आ उसके बोलों को सुनदे आ सब कुछ पता चलता है। मनुख अपने बोलों तो पहचानिया जाता है की है। शकल सूरत तो सिर्फ शकल सूरत का ही पता चलता है, रंग का पता चलता है, कद बुत का पता चलता है, नैन नक्श का पता चलता है, रंग का पता चलता है, कपड़िया का पता चलता है, सेक्स का पता चलता है। पर यह मनुख की है नहीं पता चलता। ता मरदे सुखन ना गुफ्ता भाषण ऐबो हुनर निहुफ्ता भाषण। सिर्फ बोलों तो मनुख की पहचान ही नहीं आती, मनुख का विकास भी सारा बोलों से खड़ा है, अखरा से खड़ा है। अगर मनुख को अल्फाज बोल खो ले जान ना हो तो मनुख उथे ही चला जाएगा जिथे पशु है, सारा विकास रुक जाएगा। जैसे कि मैं उदाहरण दिया, गुंगे का सारा विकास रुकया है। क्यों? इहदे कोल बोल कोई नहीं, इहदे कोल अल्फाज कोई नहीं, इहदे कोल अखर नहीं है, सीमित जी इसकी दुनिया है। इस वास्ते पंजाबी च कहंदे ने गुंगे दे इशारे गुंगे दी मां जाने और कौन जाने, और किसी नूं कुछ नहीं पता चलता की है। गुंगा मनुख कोई चोटी का संगीतकार नहीं देखा गया, कवि दार्शनिक नहीं देखा गया, गुंगा मनुख कोई चंगा व्यापारी भी नहीं देखा गया, गुंगा मनुख राजनीतिक भी नहीं देखा गया। जो धार्मिक ग्रंथां की पड़चोल करिए कोई गुंगा ऋषि मुनि भगत संत भी नहीं देखा। विकास दे सारे दरवाजे बंद ने, तरक्की दे सारे रस्ते रुके हुए ने। इहदा मतलब मनुख का जितना विकास होया है उन्नति हुई है जबान दे आसरे ते। महाराज आप कहने ने ध्यान देना, अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत बनदा, अखरी लिखण बोलण मान अखरा सिर संजोग वखा। दो बोल बोले ओपरा मनुख अपना बन गया, दोस्ती हो गई, दोस्ती संबंध जुड़ते ने बोल चाल। फिर दो बोल ऐसे बोले ने संबंध टूट गए, टूट गई प्रीत बुर बोल। महाराज कहने ने बड़ी पुरानी दोस्ती दो बोलों नाल टूट के रह गए, बड़े बड़े घरेलू कलेश झगड़े महाभारत एक अखर तो शुरू हो जाता। द्रौपदी की जबान चो ही निकल गया से कि अंधे का अंधा है, धरतराष्ट्र अंधा से, उसका लड़का दुर्योधन ये अंधे का अंधा है। लंबे चौड़े इतिहास के पन्ने में थोड़े सामने ना रखा, क्योंकि द्रौपदी बहुत अच्छी चित्रकार से
कवित्री भी सी, संगीतकार भी सी। इतनी कला किसी एक मनुख दे चाहुंदी नहीं, पर उसने चाहिए नवा महल बनाया सी उन्होंने घर, ते घर दे अंदर सरोवर, घर दी चट करनी सी, महल दा महूरत होना सी। बड़े बड़े मेहमानों नूं बुलाया सी राजा, राजियां दा महल, तो आपदी गैत लई अर्ज करा। द्रौपदी ने उस सरोवर नूं सजाया, उहदे ते इस ढंग दी पेंटिंग कीती, उह सरोवर बगीचा लगदा सी। इधर क्यारी बने, इधर क्यारी बने, इधर पुल किड़े, इधर पुल किड़े, हैगा वो पानी से, पानी दी चित्रकारी, पानी दी बगीचा बना देता। सिर्फ रंगा बुलाए गए सन दुर्योधन भी, पांडवों का चचेरा मिला, पर यह जरा देरी नाल आया, देरी नाल आया तो कदमों की तेजी भी सी, फिर मैं वक्त से पहुंचा। तेजी करके उन्हें सोचे रस्ते चो होके मैं महल के अंदर दाखिल होवा, नहीं सीधा बगीचे चो लग जा। जैसे बगीचे चो लंघन की कोशिश की थी, बगीचा तो है ही नहीं, पानी से पानी च कदम रखे डुब, तैरना जानता सी, तैर के बाहर ते आ गया, पर द्रौपदी की कई दिन की मेहनत बर्बाद चली। वो जो सुंदर चित्रकारी की थी सी उसने सब खराब। दुर्योधन नो वे

बोल जो हल्के रहे, बोला च मिठास है, बोला च दूर दृष्टि है, बोला विच गहराई है, और जिस बोल च गहराई होवेगी उचताई भी उसे चोवेगी। जिस दरख्त ने अपनिया शाखा नूं आसमान तक ले जाए, अब दी गैतली अर्ज करा फिर उस दरख्त नूं अपनिया जड़ा पाताल विच ले जाणी पैण। जो दरख्त अपनिया जड़ा नूं गहरा नहीं ले जा सकया, वो अपनिया शाखा नूं उपर भी नहीं खा सके। जितनिया जड़ा गहरिया जाणगियां उतने शाखा उपर उठणगियां। जो बोल गहरे नहीं होंदे वो बोल उच्चे भी नहीं होंदे। उच्चे बोल, गहरे बोल, मधुर बोल, ये महानता की निशानी है। मनमत हौली बोले बोल, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हल्के बोल छोटे बोल, मनुख दे छोटे होने की पहचान। तो हुण मैं अर्ज करा, मनुख की दुनिया की सारी हलचल भाईचारा ते संबंध, मनुख की बहुत सारी दुनिया की कल कलेश लड़ाई ते झगड़े 99% बोलों के आसरे ते चल रहे। बोलो, दो बोल बोले प्रीत टुट गए, दो बोल बोले ओपरे बेगाने अपने हो गए। संबंध सारे जुड़ते हैं बोलन ना, जिथे संबंध ना होवन मनुख कह देंदा साड़ी उत्थे बोल चल नहीं है। नहीं वेखदा मनुख सारिया नूं है, लेकिन वेखण दे नाल संबंध नहीं जुड़ते, बोलन नाल जुड़ते। एक सियाणा मेहमान ते सिर्फ एक दिन दे ची अंदाजा ला लैंदा है, वक्ती तौर ते सही पति पत्नी दे संबंध टुटे हुए हैं। क्यों? बोलते ही नहीं। दो भरावां दे संबंध दे दीवार खड़ी है, क्यों? बोलते ही नहीं। बोलते ही जिथे बंदे दा संबंध होवे मनुख कह देंदा उत्थे साड़ी बोलचाल है, उत्थे साड़ी बोलचाल है। मनुख दी दुनिया दी सारी तामीर, मनुख की दुनिया की सारी बर्बादी 99% बोलों से खड़ी है। ऐसे बोल धर्म ग्रंथां विच जिन्हां नूं पढ़ के ते जप के मनुख भगवान का रूप हो जाता है, पर ऐसे बोल फैश लिटरेचर विच गंदा साहित्य किताबां विच जिन्हों पढ़ के मनुख बिल्कुल शैतान हो जाता। कुछ अखर ही ने उन्होंने मनुख नूं भगवान बना दिता, कुछ अखर ही ने जिन्हां ने मनुख नूं शैतान बना दिता। एक सच्चाई है, बहुत वड्डी सच्चाई है। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी, भगत कवि अपनी बाणी च अखरां की महिमा बयान करदा और उन्हां बाणियां दे नाम ने आसा मल्ला पहला पट्टी लिखी, आसा मल्ला तीजा पट्टी लिखी, तख्ती अखरां दी महिमा है। गौड़ी मल्ला पंजवां बावन अखरे, गौड़ी श्री कबीर जी बावन अखरे। हैरानगी हुई सी मैनू अखरां दी महिमा दे उत्ते इतनी मेहनत की थी, इतना कुछ समझाया गया और एक एक अखर दी मनुख सही वर्तों करे। चलो हाथ दी किधरे गलत वर्तों हो भी गई है, पैर किसे गलत पासे चले भी गए ने, शायद इतनी तबाही ना होए जितना गलत अखर वर्त के तबाही हो जाती है, बर्बादी हो जाती है, नुकसान हो जाता है या मिलाप हो जाता है, कुछ प्राप्त हो जाता है। दूर क्यों जाइए, वाहेगुरु शब्द दो अखरां दा जोड़ है, राम अखर दो अखरां दा जोड़ है। ये दो अखरां दा जुड़िया होया अखर जब जब के मनुख राम का रूप हो जाता है, परमात्मा का रूप हो जाता है। बोल ऐसे कोई बोले राम का रूप हो जाता है, बोल ऐसे कोई बोले निरा शैतान बन जाता है। मनुख की दुनिया की महिमा सारी अखरां ते खड़ी। भगत कबीर

0: बात और डेरी लेके आए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नियर साउथ सरी वाइट ट्रॉक क्लोज टू द बॉर्डर विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ होम एंड बिजनेस. इन्वेस्ट करो 8 acres अति 100,000 स्क्वायर फीट की ग्रीन हाउस नर्सरी बिजनेस विच एंड बी योर ओन बॉस. तुहाडी अति तुहाडी फैमिली लई सुनहरा मौका जिवे विच नर्सरी दे नाल नाल फाइन बेडरूम हाउस टोटली रीमॉडल विद इंक्रॉन आउटडोर पूल रिटेल शॉप वेयर हाउस प्राइवेट स्पेस अति होर भी बहुत कुछ. आज ही संपर्क करो गुरदयाल सिंह बाप नू एट 604-351-5111.
1: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program, or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch program, or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares.

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI रेडियो ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
2: महादेव का उकैत सदा सेव निरंकार का चिन्हत नह पेवा। आपे अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुम्हारा लखा न जाए पसारा किह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहि भूपा। अंडज जेरज सेत जकीनी उदपुज खान बाहर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट पायो शंकर एकठा। सिगरी सृष्ट दिखाय चम पाव आज जुगाद स्वरूप स्वयं पाव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार या सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रण काता। जे आसोज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुहुए मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटा।